0: मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुई संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The Ministry of External Affairs has issued an advisory to Indian citizens undertaking the Kailash Mansarovar Yatra through tours organized by private tour operators. In a statement, the ministry said it is in receipt of several requests for help and assistance from Indian citizens stuck in Nepal while undertaking Kailash Mansarovar Yatra without the required entry permit and visas for China. It said citizens are advised not to commence their journey from India until all required travel documents have been obtained for undertaking the complete journey. Union Ministers of State for Health and Family Welfare Anupriya Patel has said that India had made significant progress in healthcare over the past 12 years and is working toward the broader goal of universal health coverage, ensuring accessible, affordable and quality healthcare for every citizen. Speaking at the 9th edition of the Doctors Day Conclave of a private media channel program, Ms. Patel highlighted Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana as one of the world's largest health assurance programs covering around 62 crore people and said it is helping families access treatment with financial protection. Delhi Chief Minister Rekha Gupta warned that coaching centres which fail to comply with mandatory safety norms will no longer be permitted to operate in Delhi. In a video message, Gupta said the Delhi government will soon introduce a robust regulatory law to ensure stricter oversight, greater accountability and enhance student safety. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has ordered the formation of a special investigation team to be headed by Thane Joint Commissioner of Police Punjab Rao Ugle to investigate the Maharashtra Teacher Eligibility Test or TET paper leak case. The move comes after Bhiwandi Police foiled a major paper leak a day before the scheduled TET examination by arresting three alleged members of the racket. Following the incident, the Maharashtra State Council of Examination postponed today's TET examination. A revised date for the test will be announced later. The death toll in Venezuela's earthquakes has risen to 1,430. The latest figures were released as rescuers continued the search for survivors of the 1-2 punch of 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes that devastated the South American nation on Wednesday. Families have reported at least 68,900 people missing. Goa's 14-year-old international master, Elson Waz, has become India's 96th chess grandmaster after securing his third and final grandmaster nom at the Sarajevo GM mixed tournament in Bosnia and Herzegovina. In the FIFA World Cup, England defeated Panama 2-0 in their Group L match at New Jersey Stadium in the United States this morning. Jude Bellingham and Harry Kane scored a goal each as England secured the top spot of Group L. And that is the end of this news bulletin.
3: শ্ৰোতাই অনুষ্ঠান শুনিছে আকাশবাণী নগাঁও কেন্দ্ৰৰ পৰা। অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হৈছে FM বেণ্ডৰ 102.7 MHz-ত।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
6: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
7: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
8: हमारे यहाँ रोड कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकिलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, उसकी रिसाइकिलिंग करना कठिन हो जाती है।
9: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप ए में ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
11: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स पैट्रिक हर्मिनी टुडे टू ऑल्सो एड्रेस सेशेल्स नेशनल असेंबली एंड इंटरैक्ट विद मेंबर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा। Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents.

कमाल की बात है कि आज के दिन देश में हालत ये हो गई है कि हर छोटी से छोटी चीज में ये लोग रिलीजियस हेट्रेड घोल देते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है मेरी राय में, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हिंदू मुस्लिम जितने अलग होंगे एक दूसरे से, जितनी लोगों के बीच में नफरत फैलेगी उतने ही इन्हें वोट मिलेंगे डर के नाम पर।

धर्म ढूंढना ये लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है। इन लोगों को हर चीज में हिंदू मुसलमान करना होता है, तो ये अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि लैंग्वेजेस में भी ये हिंदू मुस्लिम करने लग गए।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की ये ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।

बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है।

साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो

0: लोग मूर्तियां खरीदते हैं, वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ইমান পৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাত শুনিলে। এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আৰু বিবিধ ভাৰতী গুৱাহাটী। এতিয়া আগবঢ়াইছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতৰ অসমীয়া ভাষান্তৰ। এই ভাষান্তৰ অসমৰ আকাশবাণীৰ কেন্দ্ৰসমূহে ৰিলে কৰি শুনাব।
3: মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী নমস্কাৰ। মন কী বাতৰ জৰিয়তে আপোনাসবৰ সৈতে পুনৰবাৰ জড়িত হবলৈ পাই মই আনন্দিত হৈছো। 2026 বৰ্ষৰ আধা শেষ হবৰে হৈছে। বিগত এই ছমাহত আমি মন কী বাতত দেশবাসীৰ অনেক অভিজ্ঞতা সম্পৰ্কে চৰ্চা কৰিলো। জুন মাহতো দেশে এনে কিছু অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিছে যিসমূহে দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিব। এই সফলতা দেশৰ সুৰক্ষা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সৈতে জড়িত। অলপতে মই কলকাতাত আয়োজিত নৌসেনাৰ এটি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। তাত INS দুনাগিৰি, INS সংশোধক আৰু INS অগ্ৰয়ক ভাৰতীয় নৌসেনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। এই জাহাজৰ নিৰ্মাণ তথা ডিজাইন সকলো দেশীয়। বন্ধুসকল, জুন মাহতেই বিমান পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো দেশে সফলতা লাভ কৰিছে। C-295 বিমানখন

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अभी आप सुन रहे थे देशगान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्रीतम के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर की रचना है, आवाजें आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा की, फिल्म का नाम दे दनादन।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज हम आपको संगीतकार प्रीतम की संगीतबद्ध कुछ फिल्मी रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म ऐ दिल है मुश्किल का गाना। इसे अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है और धुन प्रीतम की।

अरिजीत सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्मों ए दिल है मुश्किल का ये गीत। आइए सुनते हैं हिमशिखा और अरिजीत सिंह की आवाजी। फिल्म का नाम है एजेंट विनोद, गीत रचना अमिताभ भट्टाचार्य की और संगीत प्रीतम का है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जावेद अली और जोजो की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम का संगीत है, सुब्रत सिन्हा का लिखा गीत, कुणाल गंजावाला की आवाज और फिल्म का नाम आंखें।

कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है बर्फी। इसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और धुन प्रीतम की ही है।

केके की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे संगीतकार प्रीतम की कुछ संगीत रचनाएं।

लीजिए सुनिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे हैं? नहीं, आप बाहर से हंस रहे हैं लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अलग चल रहा है ना? भाई होता है ऐसा, कई बार हम बाहर से बहुत खुश नजर आते हैं लेकिन भीतर कोई तूफान हमारे बहुत तेजी से चल रहा होता है। लेकिन एक इंसान को अपने स्वरूप को छिपाकर बाहर कुछ और दिखाना पड़ता है। शायद समाज में यही सब चलता है और हम यही तो करते हैं। तो आप में से हमारे बहुत सारे श्रोता भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है जिंदगी में कुछ उथल पुथल भी हमारे चल रही होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं कैसे हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छे हैं। यही है एक कलाकार की एक विशेषता, एक गुण जिसे हम कह सकते हैं। और आपने देखा है कि हिंदी फिल्मों में भी ऐसे कई गीत फिल्माए गए हैं दोस्तों, जहां नायक या नायिका होंठ नहीं हिलाते बल्कि कुछ गीत उनके अंतर्मन की आवाज या विचारों के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं, है ना? तो ये फिल्मी पर्दे पर फिल्माए हुए गीत नायक या नायिका के मन की उलझनों और भावनाओं को बिना होंठ हिलाए व्यक्त कर जाते हैं। और ये गीत किरदार की तन्हाई और आंतरिक पुकार को, उसके दिल के दर्द को, उसकी सोच को पृष्ठभूमि में बहुत खूबसूरती के साथ बयां करते हुए नजर आते हैं और हमारी आंखें भी भीग जाती हैं। भीगती है ना? तो याद कीजिए वो पल जब आपकी आंखें किसी दृश्य को देखकर, किसी गाने को पर्दे पर चलते हुए देखकर भीगी होंगी। हाँ, आज की जो हमारा टेक्स्ट है, आज का जो टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो लोग फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं। बहरहाल ये भी आप जान लें कि www.facebook.com/

SBS मुंबई पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। तो हमारा आज का टेक्स्ट है, बाहर की दुनिया में कदम रखते ही हम एक मुखौटा पहन लेते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे का, सब कुछ ठीक होने का दिखावा करने का, लेकिन उस मुखौटे के पीछे हमारे भीतर एक अनवरत युद्ध चल रहा होता है। भीतरी उथल पुथल और इस वैचारिक तूफान से हम विचलित हो जाते हैं। आज कुछ ऐसे ही फिल्मी गीत आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें नायक या नायिका फिल्मी पर्दे पर इन गीतों में होठ हिलाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि ये गीत उनके अंतर्मन की आवाज या वैचारिक द्वंद्व के रूप में पार्श्व में बजते रहते हैं। तो कौन से गीत है अब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने आपके संदेश देखे हैं, आप लोगों ने दुनिया भर के गीत हमें लिखकर भेज दिए हैं। जी तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सुरीला सफर का, और इस सफर में हम सभी साथ हैं, है ना? तो चलिए फिल्म आंधी का ये गीत याद कीजिए, जहां आवाज दे रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार साहब के बोल हैं, राहुल देव बर्मन की धुन। पर्दे पर संजीव कुमार और सुचित्रा सेन, कितने अंतर्द्वंद उनके भीतर चल रहे होते हैं और एक दूसरे को वो कुछ इस अंदाज में बिना कुछ कहे कह रहे होते हैं।

0: जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे फिल्म आंधी में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा हट के काफी रोचक विषय चुना गया है, जिससे सुरीला सफर का कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत आरंभ से लेकर अंत तक थोड़ा थोड़ा बजता है, वो किसी अभिनेत्री अभिनेता पर फिल्माया नहीं होता। शायद ये बात भी आज कार्यक्रम में शामिल हो, तो चलिए आनंद लेते हैं आज के सुरीले सफर का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज अगर देखा जाए तो मानव का दिखावटी चेहरा और उनके मन को भाव को जानना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा जाता है कि उसके मन में चोर है लेकिन दिखता बहुत शरीफ है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने बजेंगे, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ जैसे कुछ गाने बजने वाले हैं। और हमने तो आज के सुरीला सफर में आपके साथ चलने के लिए पेटी बांध ली है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अरे तो हमारे साथ सफर में चलिए ना, हम तो सुरीला सफर लेकर जब भी आते हैं तो सारे श्रोताओं से कहते हैं कि चलिए और निकल पड़ते हैं। आप भी इसमें शामिल हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि हर इंसान अपने भीतर एक ऐसी कहानी लिए चलता है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह पढ़ नहीं पाती। चेहरे पर सजी मुस्कान अक्सर जीवन की सच्चाई नहीं बल्कि परिस्थितियों से समझौता करने की एक खामोश कला होती है। भीतर विचारों का शोर, भावनाओं का द्वंद्व और अनकहे दर्द का तूफान चलता रहता है, फिर भी हम हर दिन सामान्य दिखने का अभिनय करते हैं। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा साहस है, अपने संघर्ष को छिपाकर भी उम्मीद का दीप जलाए रखना और हर सुबह फिर से दुनिया का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेना। बहुत सुंदर लिखा है आपने, शुक्रिया। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही देर में सुरीला सफर शुरू होने वाला है लेकिन मन में अभी से अंतर्द्वंद चल रहा है कि आज आप कौन सा गीत सुनवाने वाली हैं। इबारत तो सुबह ही पढ़ लिया था और ये मनोरंजक प्रोग्राम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में बहुत सारे गीत शामिल होंगे लेकिन कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, और आज तो बहुत सारे गीत हमारी पसंद से आपके मिलने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयां हमारे श्रोताओं को। जी, जो हम ये म्यूजिक बजा रहे हैं इसमें भी आप गाना पकड़िए कौन सा है, और ये भी वैसा ही गाना है, यानी जहां नायक और नायिका सिर्फ पर्दे पर आते हैं और अपना अभिनय करते हैं लेकिन होठ उनके नहीं हिल रहे होते हैं। तो आज के सवाल नोट कर लीजिए, जब आप कोई फिल्म देखने गए थे आज तक, जो भी फिल्म आपने देखी होंगी, वैसे तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन कभी आपको याद हो कि किसी गीत को, ऐसे ही किसी गीत को जैसा विषय आज हम लेकर आए हैं, पर्दे पर देखकर आपकी आंखें भर आई हों और छल छला आई हों, या गला रुंध गया हो, या आप रोने से लगे हों, ऐसा कोई गीत जो आपकी याद में शामिल है तो उसका जिक्र करें। मेरे साथ तो फिल्म देखते समय अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी दर्द भरा गीत आया नहीं, आंखें छल छलाने लगती हैं और मन ऐसे लगता है जैसे रो लिया जाए। और एक और सवाल कि आपके भीतर क्या चलता रहता है, आपका अंतर्मन, आपके अंतर्मन की आवाज क्या कहती है। आपके जीवन में जो भी चल रहा है, बाहर आप हंसते हैं मुस्कुराते हैं, लेकिन आपके भीतर की आवाज क्या है, क्या कभी आपने उसे सुना? कम से कम शब्दों में बताइएगा। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। एसडी बर्मन का संगीत है, कैफी आजमी के बोल हैं, गीता दत्त की आवाज, एक कालजयी गीत है, फिल्म का नाम कागज के फूल।

थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्यों आ जाती है? आप ढूंढिए, बिल्कुल आराम से मिलने वाले हैं। वैसे जो आपने 10 गीत लिखे उनमें से बहुत सारे गीत मिल रहे हैं, देखिएगा कितने गीत मिलते हैं हमारी पसंद से, है ना। वहीं आप लिखते भी हैं कि कुछ और गीत आते हैं तो जरूर लौटकर आऊंगा। अरे वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम में कौन से गाने होंगे इसकी मुझे बहुत उत्सुकता है, मुखौटे के पीछे की बात तो वाकई दिलचस्प है। भाई मुखौटा तो आपने भी पहन रखा है, जीवन में जरूरी भी है और हम पहनते भी हैं, लेकिन हाँ उस मुखौटे के पीछे अगर हमारा क्रूर रूप है वो गलत है। मुखौटा तो जीवन में हम पहनकर निकलते ही हैं रोज। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर इबारत पढ़कर दिल खुश हो गया, बहुत ही प्यारा खूबसूरत विषय लेकर आई हैं। हिंदी सिनेमा में पार्श्व गीत केवल दृश्यों को भरने का माध्यम नहीं बल्कि ये कथा के विस्तार और पात्रों की अंतरात्मा की आवाज होते हैं। ये गीत अक्सर मौन में छिपी भावनाओं, अनकही तड़प और परिस्थितियों के मर्म को सीधे दर्शक के दिल तक पहुंचाते हैं। गानों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाना भारतीय फिल्मकारों की एक सशक्त शैली रही है जो दृश्य और संगीत के संगम से एक ऐसा भावनात्मक कोलाज बनाती है जो सीधे रूह को छू लेता है। जब पर्दे पर पात्र मौन होते हैं या परिस्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि संवाद कम पड़ जाते हैं, तब ये गीत कहानी का भार अपने कंधों में उठा लेते हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में ऐसे कई गीत होंगे जिसमें नायक नायिकाओं के अंतर्द्वंद को उजागर किया गया है और पाश में वो बजते हैं। मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, जिसने अधिकतर फिल्में देखी होंगी उन्हें पता होगा। चलिए तो कार्यक्रम में इस सफर में हमारे साथ तो है ना आप। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कला शायद यही है कि टूटते हुए भी मुस्कुराना सीख लेता है। दुनिया उसकी मुस्कान देखती है लेकिन उसके भीतर चल रहे युद्ध की आहट केवल उसका अपना मन सुनता है। बाहर से समंदर शांत दिखे ये जरूरी तो नहीं, गहराइयों में तूफानों का बसेरा भी तो होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर का ये जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे आया है, हम थोड़ा लेट हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हम बेवफा हरगिज न थे। नहीं नहीं, आप कहाँ हैं बेवफा, हमने तो कभी ये जिक्र भी नहीं किया कि हमारे श्रोता बेवफा हैं, बल्कि आप तो वफादार हैं, तभी तो इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं, है ना। एक श्रोता लिखती है कि सुप्रभात, आज तो दिल को छू लेने वाली इबारत है। मन में जो भाव होते हैं कई बार ऐसे होते हैं किसी को बता नहीं सकते, कभी किसी की याद आती है, कभी कोई घटना याद आ जाती है लेकिन वर्तमान से मेल नहीं खाती। जैसे शादी ब्याह के समय हमारी माँ याद आती है, हंसते हंसाते हमें रोना पड़ता है, फिर सबके सामने छुपकर चुपके से हम अपने मन को शांत करते हैं और किसी को कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल सही कहा, जब बात शादी की चली है तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आइए सुनते हैं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, आवाज मुकेश की, फिल्म का नाम बम्बई का बाबू। ये गीत सुनने के बाद हमारी आंखें छलछला आती हैं। जब पर्दे पर इस गीत को हम देखते हैं तो भाई जो हमने आपसे सवाल किया था वही होता है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि अधिकतर ये देखा जाता है कि हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये जवाब मिलता है कि ठीक है या बढ़िया है। ऐसे ही हम भी कहते हैं बढ़िया है जब हमसे कोई पूछता है, जबकि जरूरी नहीं हम सबके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, क्योंकि भीतर तो उथल पुथल और वैचारिक तूफान सबके साथ चलता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में आने के बाद तो हम रहे ना हम, हमारी श्रीमती जी तो कहती हैं कि एक बजने वाला है, सब काम से फ्री हो जाओ, नहीं तो एक घंटे तक आपके मिजाज नहीं मिलेंगे, क्या करें। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिन्हें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। बैकग्राउंड गाने में आंखें भर आई थी फिल्म हाथी मेरे साथी में, जब रामू हाथी की मृत्यु हो जाती है और बैकग्राउंड में रफी साहब का गाना बजता है, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, तो आंखें भर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मार्मिक सीन है वो। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चल रही सजनी अब क्या सोचे, ये गाना सुनते सुनते तो आंखें बहने लगती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज एक गाना है बिन फेरे हम तेरे का टाइटल गीत, जो कि किशोर कुमार ने गाया है, बड़े ही भावुक अंदाज में गाया है। कभी कभी तो इस गीत को गुनगुनाने में मैं बहुत ही भावुक हो जाता हूँ। और एक ऐसा ही गीत फिल्म भीगी पलकें का है, जिसे अक्सर किशोरदा ने गाया। उस गाने को अक्सर जब मैं सुनता हूँ तो लगता है कि मेरी आंखें भर आई हैं। गीत है जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सुनकर भी हमारी आंखें भीग रही हैं, क्या करें जी। तो हमारे सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और हम शामिल कर रहे हैं आपके जवाब। अगला गीत है जगजीत कौर की आवाज में फिल्म बाजार से, मिर्जा शौक की ये रचना है और खय्याम साहब का संगीत है। याद कीजिए सुप्रिया पाठक को। साथ में है फारूक शेख। क्या हालत है दोनों की, बिना कुछ कहे जैसे सब कुछ कह जाते हैं इस गीत के माध्यम से।

जगजीत कौर को आप सुन रहे थे फिल्म बाजार में। हमारे सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं हम कि आपके अंतर्मन की आवाज क्या है, और या यूं कह सकते हैं कि इस समय आपके भीतर क्या चल रहा है। बाहरी रूप में तो आप इस सफर में हमारे साथ चल रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी बात लिख रहे हैं, लेकिन आपके भीतर इस वक्त क्या समझ गए मेरी बात? और ऐसा कोई गीत जिसे आपने जब फिल्म के दौरान देखा और आपकी आंखें भर आई? बहुत सारे ऐसे गीत हैं जिन्हें देखते समय हमारी आंखें भर आती हैं, लेकिन आपकी याद में जो गीत शामिल है उसका जिक्र करें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बहुत ही कम शब्दों में कि हमारे भीतर यानी मेरे भीतर बहुत शोर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने लिख दी कि वाकई भीतर एक शोर जो है, कोलाहल मच रहा होता है हमारे, लेकिन बाहर हम मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यही जिंदगी का शायद फलसफा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत यादगार होगा क्योंकि आज की थीम बहुत शानदार है। एक श्रोता लिखते हैं कि इस अंदर की खामोशी को आजकल एक नाम मिल गया है, साइलेंट डाइवोर्स, जिसमें पति पत्नी साथ रहते हैं। पति पत्नी के अलावा सभी को ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, पर अंदर की परेशानियों को, अंतर्द्वंद्व को ये दोनों ही अच्छे से समझ पाते हैं। और हिंदुस्तान में तो खास तौर से ऐसे कई जोड़े आपको मिल जाएंगे जो अलग भी नहीं रह पा रहे और साथ भी नहीं रह पा रहे। बहुत बड़ी समस्या की ओर आपने इशारा किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि गदर एक प्रेम कथा फिल्मों में जब अभिनेत्री को गोली लग जाती है तो बच्चा अपनी माँ के लिए रोते हुए गीत गाता है, घर आजा परदेसी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, वो पल बहुत भावुक था मेरे लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि द्वंद्व हमेशा बुरा नहीं होता, कई बार हमें सोचने, सीखने और सही निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब हम अपने मूल्यों को समझते हैं, धैर्य रखते हैं और स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं तो ये द्वंद्व धीरे धीरे स्पष्टता में बदल जाता है। बहुत सुंदर। बाकी आपने और भी बहुत कुछ लिखा है कि अंतर्मन में द्वंद्व तब होता है जब हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं और कर्तव्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते। एक ओर स्वार्थ होता है और दूसरी ओर नैतिकता और जिम्मेदारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में जरा अलग हटके काफी रोचक विषय चुना गया है जिसमें सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने की जिज्ञासा बढ़ गई है। हाँ, वैसे मैंने कई फिल्मों में देखा है कि बैकग्राउंड में एक ही गीत बजता है और अंत तक बजता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बर्मन दा के गाए ज्यादातर गीत अंतर्मन की आवाज होते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे ऐसे गीत हैं एसडी बर्मन साहब के जो अंतर्मन की आवाज है, और उन्हें पर्दे पर देखकर या जिंदगी में गुनगुनाते हुए जब हम उन्हें गुनगुनाते हैं तब भी हमारा मन भर जाता है। आइए सुनते हैं ऐसा ही गीत। सचिन देव बर्मन का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, सचिन देव बर्मन की ही आवाज यानी बर्मन दादा की आवाज, फिल्म का नाम आराधना। जी हाँ, फिल्म का नाम आराधना।

अगर आप बता सके तो बताइए, पर्दे पर इसमें इस गीत में शर्मिला टैगोर है, उनके साथ पिता के रूप में कौन से कलाकार हैं? इस फिल्म में उस किरदार का नाम है गोपाल त्रिपाठी, उनका असली नाम क्या है बताइएगा?

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के अनेक रूप हैं, मगर पीड़ा का केवल एक ही रूप है। वो पीड़ा हमारे चेहरे पर दिख न जाए सो हमें अनेक मुखौटे समय समय पर लगाने पड़ते हैं और हमें ठहरना नहीं सिखाया जाता, इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। सुख हो या दुख, हम एकदम से तिलमिला उठते हैं। कोई कैसे जान सकता है कि हमारे जीवन की बेचैनियां तो तब भी सांसें भारी लगे थोड़ा मन को आराम दे बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के, क्योंकि भावुक हर भाव व्यक्त नहीं किया जा सकता है। कुछ भावों को संभाल कर हमें रखना होता है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत बहुत आभार, आपने बिल्कुल सच कहा कि भावुक होना चाहिए पर प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार होठ कुछ नहीं कहते पर अंतर्मन की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम जो है, जिस आपकी आवाज में का प्रवाह गंगा नदी के समान है, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम फिर नहीं आते, बहुत शानदार गीत है, जिंदगी की हकीकत को बयान करता ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अंतर में बस यही चल रहा है कि अपनी बेटी की विदाई कैसे करूंगी। और एक श्रोता लिखते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पर मन के हालात अगर सही नहीं है तो दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये खतरा होता है। और वहीं एक श्रोता लिखती है कि अभी बहुत से गीत रह गए हैं, ये थीम दोबारा लाएं मंदाकिनी जी, अभी मन नहीं भरा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत कानों से नहीं अंतर्मन से सुने जाते हैं, इसलिए वो बरसों बरसों जो है याद रहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम दिल को छू रहा है, आंखें भीगती जा रही हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, बेहद खूबसूरत है आज का ये कार्यक्रम। जी, तो कहा ना किशोर कुमार ने कि जो है वक्त रुकता नहीं है और ठहरता नहीं है, बदलता रहता है और पर्दे पर मंजर बदल जाता है। देखिए, बदल गया है मंजर, समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अब मंदाकिनी जोशी चाहती है इस कार्यक्रम से इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: Good afternoon. This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies, with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandher, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: In this episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also touched upon the subject of superstition. He noted that superstition has been deeply ingrained in human society for millennia. Mr. Modi shared how the rare Hargela bird found in Assam was considered inauspicious in certain parts of the state. The Prime Minister stated that it was during that time that biologist Purnima Devi Barman resolved to change the misconceptions deeply rooted in people's minds.
1: हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: Touching upon the topic of sports, Prime Minister Modi expressed happiness that the number of young people in the country who are both playing sports is rapidly growing. In today's Mann Ki Baat, Prime Minister Modi also spoke about preserving people's creativity in the age of technology and AI. He said Nalanda University has found a solution to this and is now shaping India's destiny in a new avatar.
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: Mr. Modi highlighted other significant efforts are underway to prepare the youth for new technology while keeping them rooted in their heritage. The Central Sanskrit University in Delhi is launching a B.Tech program in artificial intelligence and data science. Prime Minister Modi expressed happiness that Indian culture is reaching various corners of the globe today. He spoke of an initiative in the Dominican Republic, which has an Indian population of around 100.
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: The Prime Minister mentioned Meghalaya's root bridges, saying these root bridges take decades to take shape. He shared that India has now applied to have Meghalaya's root bridges included in the UNESCO World Heritage Site Network. On the subject of cleanliness, Mr. Modi gave the example of some women from Byavara in Rajgarh district of Madhya Pradesh. The women resolved to remove plastic waste scattered around the area. Mr. Modi also urged people to ensure that the idol of Ganpati Bappa for Ganesh Utsav is made from the soil of this country and crafted by the hands of local potters and artisans. He also urged those who make Ganesh idols to prioritize clay idols. Concluding his address, the Prime Minister stressed on water conservation, saying that every single drop of rainwater must be saved. He said the momentum of Catch the Rain campaign should not slacken. In some more news, Prime Minister Narendra Modi and President of Seychelles Patrick Hamani held bilateral talks at Victoria this afternoon. Both leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. Earlier, he was given a guard of honor at the State House, with President Hamani also present. Several agreements were exchanged in a range of fields, including agriculture, finance, space, and health. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan today highlighted the central role of villages in realizing the vision of Viksit Bharat 2047. Addressing the Rashtriya Grameen Vikas Sammelan in New Delhi, Mr. Chauhan said a provision of over 1,51,000 crore rupees, including the state's contribution, has been made under the Viksit Bharat Grameen scheme to accelerate rural development while ensuring livelihood security for rural workers.
2: Village is not merely a part of India's geography. It is the soul of India. It is India's economy, its identity. A village is not just a settlement. It embodies India's civilization, culture, values of life, traditions, and has long been a center of prosperity. Our strength lies in our villages, and so does our future potential. Villages are also the strongest unit of our democracy. Today's conference is a meaningful churning of ideas aimed at achieving rural prosperity.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at TIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Midday News. The security situation in West Asia has deteriorated sharply after the fragile US-Iran ceasefire effectively collapsed, with both sides launching fresh military strikes over the past several hours. The United States said it carried out airstrikes against 10 Iranian military targets near the Strait of Hormuz after accusing Tehran of attacking a commercial oil tanker with a drone. US President Donald Trump warned that further violations could trigger a much broader military response. Iran responded within hours with missile and drone attacks targeting American military facilities in Kuwait and Bahrain. More from our correspondent.
3: The latest exchange marks the most serious collapse of the interim ceasefire agreed earlier this month between Washington and Tehran. The United States Central Command says it carried out strikes on multiple targets inside Iran in response to continued attacks on commercial shipping. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps says it retaliated by launching missiles and drones targeting U.S. military infrastructure in Kuwait and Bahrain. Following the exchange, both Washington and Tehran accused each other of violating the ceasefire. In a statement, United States Central Command said Iran had been given an opportunity to uphold the ceasefire, but instead launched a one-way attack drone that struck Panama-flagged oil tanker MT Kiku. Iran's foreign ministry, meanwhile, said it had carried out strikes against targets linked to American forces, blaming it as the treaty-breaking United States regime for renewed escalation. This is Vinod Kumar for Akashvani News from Dubai.
0: Indian assistance sent under Operation Amistad has reached Venezuela. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar expressed confidence that the field hospital unit, relief supplies, medicines and medical equipment will bolster ongoing post-earthquake relief efforts in the country. On to sports now. Kidambi Srikanth has advanced to the men's singles final of the U.S. Open Badminton Championships at the Titan Gym in California today. Srikanth defeated Japan's Yudai Okimoto in a hard-fought semi-final. He will next face Su Li Yang of Chinese Taipei in the final. In ICC Women's T20 World Cup, India will take on Australia in the final Group A match at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. In men's cricket, India will take on host Ireland in the second and final T20 International of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. Indian Standard Time. In FIFA World Cup, Argentina star Lionel Messi has become the first player in history to score in 7 consecutive World Cup games. The 39-year-old scored with a free kick after coming off the bench as Argentina won 3-1 against Jordan. It was Messi's 6th goal of the 2026 World Cup and he leads the Golden Boot race by 2 goals. Lo Celso and Lautaro Martinez scored the other 2 goals for Argentina as they finished their Group J campaign with 3 wins from 3. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies with focus on indigenous defense production. Highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft made in India. In his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation level talks in Victoria. Government asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in the final Group A match in London today. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
4: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
4: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2,500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
4: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा

0: व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
0: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
1: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
0: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के 2 ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।

0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किको पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राजकुमार, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजा मेहदी अली खान की लिखी रचना सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था आपकी परछाइयां।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है मेरे महबूब। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी की लिखी गीत रचना। गायिका हैं लता मंगेशकर और ये फिल्म है बाघी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम हैं राही प्यार के। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका 2 गाना अब आप सुनेंगे, स्वर लता मंगेशकर और तलत महमूद के। इस गीत को जानिसार अख्तर ने लिखा है और धुन बनाई है हयम साहब ने।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आवाज मुकेश की। फिल्म का नाम है दिल ही तो है। गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत रोशन का।

अगला गीत सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल, निशा और इनके परिवार वाले। आप हैं समाना मंडी पंजाब से अश्विनी कुमार वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, अर्पणा और विकास वर्मा। ये खत हमें मिला है सिमगा छत्तीसगढ़ से श्रीमती सविता जैन, प्रदीप जैन और उनके साथियों का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म चंपा कली में। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की है और तर्ज हेमंत कुमार की।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था चंपा कली। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। ये है सिमगा छत्तीसगढ़ से पुष्कर भोसले और इनके परिवार वाले, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और इनके परिवार वालों ने ये खत लिखा है। ये लिखने वाले हैं हमारे ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मुकेश की आवाज। फिल्म का नाम है सहेली। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज है। फिल्म का नाम है अनोखी रात। इस गीत को इंदिवर ने लिखा है और धुन रोशन की है। सुनने के लिए आप सभी ने हमें फरमाइश भेजी। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं महाराष्ट्र से विनोद कुमार अठिया, भारती अढ़िया, पारस, उर्वी बेन अढ़िया और इनके परिवार वाले। इसी गीत को सुनने के लिए आपने भी हमें खत लिखा है। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, वीना देवी आर्य, प्रतीक आर्य और ये हैं छत्तीसगढ़ से डॉक्टर प्रदीप, देवेंद्र और उनके साथी। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनोखी रात में।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं गांव टुकिया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार ढाबी और उनके परिवार वाले। अंबेडकर चौक खुरई से ये खत हमें लिखा है राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कटी पतंग। कार्यक्रम का आखिरी गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज और फिल्म का नाम सूरज और चंदा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे। बाबुल गांव पातुर से प्रकाश पाटिल, अलका पाटिल, दीप्ति, तृप्ति, यशोदीप और उनके परिवार वालों ने ये खत हमें लिखा है। आप हैं अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर और माही किल्लेकर का। आइए आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा का ये गीत।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में पेश किया आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाही गीत।
2: चाहेगी।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं नाटक कटीला रास्ता का दूसरा एवं अंतिम भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने और इसके निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक। तो आइए सुनते हैं नाटक कटीला रास्ता, इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग।
1: मैं बहुत बदनसीब लड़की हूँ डॉक्टर साहब।
2: तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो?
1: मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। आपके मामा जी छाती के दर्द से बेचैन थे, उसी के शिकार हो गए। मेरे झंझट में आप उनकी भी देखभाल नहीं कर पाई।
2: उनके रोग का इलाज इस गांव में नहीं था, मैंने भरसक कोशिश की पर क्या किया जाए, उनकी अवधि पूरी हो चुकी थी।
1: वे देखते ही देखते चले गए डॉक्टर साहब।
2: एक बात मैं उनसे कह नहीं सकी, कहना तो चाहा था, कितने में ही चुड़ैल नागमणि आकर मुझे ले गई।
1: वो क्या बात थी डॉक्टर साहब?
2: अगर मैं मर्द होती
1: तो फिर
2: शकुंतला से शादी कर उसे नया जीवन देती, यही कहना चाह रही थी मैं।
1: आप बहुत महान हैं डॉक्टर साहब। मैं बेखबर सो रही थी, जब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने आपके बारे में पूछा। इस जानम्मा से पता चला कि नागमणि डाइन आकर आपको ले गई है।
3: और तभी शकुंतला तुरंत चिल्ला उठी, नागमणि तो काली सापन है, भयानक सापन है।
1: ये सुनते ही मामा जी बहुत चिंतित हो उठे थे, उनको थक्का सा लगा। आप ही की फिक्र में वे छटपटाते हुए दम तोड़ गए।
2: उनको यही खबर जानलेवा साबित हुई, इस थक्के को सहने की ताकत उनमें नहीं थी। लेकिन मैं डॉक्टर होकर इतनी नाजुक दिल नहीं हो सकती। खैर, जो हुआ सो हुआ। सुनो जानम्मा।
3: जी डॉक्टर साहब, क्या बात है?
2: अल्लाह बख्श नहीं आया तक?
3: आते ही होंगे।
2: देखो शकुंतला
1: जी,
2: तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो, अब आगे के काम जल्दी जल्दी होने हैं। और देखो, तुम्हें बेहिचक गवाही देनी होगी।
1: डॉक्टर साहब, मैं कैसे भरी अदालत में गवाही दे सकूंगी? डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी का क्या होगा? मेरे भरोसे और मेरे मोहताज बनकर जी रहे मेरे परिवार की इज्जत का भी तो सवाल है।
2: शकुंतला, कैसी बातें कर रही हो तुम? उस दर्दनाक दिन की याद करो, बारिश की शाम को तुम पर जो वहशियाना जुल्म हुआ उसका बदला।
1: मेहरबानी करके उस घटना की याद न दिलाइए डॉक्टर साहब, मैं उस घिनौने धब्बे को धो डालना चाहती हूँ। आप उसे समाज के सामने मत आने दीजिए।
2: शकुंतला, इस तरह तुम ये साबित कर रही हो कि तुम भी औसत मामूली लड़कियों में ही हो।
1: माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आराम से जिंदगी गुजारनी है।
2: शकुंतला, आगे बढ़े कदम को पीछे हटा लेना मेरे बूते की बात नहीं है। तुम निसंकोच सच्चा बयान देने को तैयार रहो।
3: शकुंतला बेटी, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब तुम्हारी भलाई की ही बातें कर रहे हैं, तुम निडर बनो बेटी।
4: गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
2: हेलो माँ, आओ, तुम्हारा स्वागत है।
4: देखो तो, तुम्हारी डिस्पेंसरी देखने और कौन आए हैं?
5: हेलो।
2: ओह, डॉक्टर रतनगिरी, विश्वविख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ, बैठिए।
5: धन्यवाद धन्यवाद। कहिए, आपकी डिस्पेंसरी तो ठीक ठाक है ना?
2: आपके नर्सिंग होम की तुलना में।
4: भारती, तुम्हें खुशखबरी सुनाओ।
2: सुनाओ।
4: मैं शीघ्र ही मद्रास जाकर इनके साथ काम करने वाली हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पत्नी की शिक्षा का सम्मान करना शुरू किया, उसके लिए बधाई।
3: अम्मा जी,
2: बताइए क्या लेंगे आप? कॉफी, चाय, नारियल का पानी?
4: कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ घर चलो।
5: वो हमारा मतलब था हमारे साथ भोजन करने का निमंत्रण अगर।
3: हाँ। डॉक्टर साहब, ये चिट्ठी शकुंतला दे गई है।
4: शकुंतला? कौन शकुंतला?
2: तुम जानते हो उसे उमा?
4: उसके बारे में आज सुबह यहाँ के बड़े रईस कुमार स्वामी बातें कर रहे थे। ये शकुंतला ग्राम सेविका है ना?
2: हाँ हाँ, ये चिट्ठी उसी ने भेजी है। हाँ, क्या बातें हो रही थी उसके बारे में?
4: उसका दूर का रिश्तेदार एक लड़का है।
2: तब
4: खुद कुमार स्वामी ने उस लड़के के साथ शकुंतला की शादी कराने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। कह रहे थे गांव के मंदिर में शादी करा देंगे।
5: अच्छा, वो सुबह नए कपड़े, फूल मालाएं, फल तांबूल वगैरह लेकर जो लोग आए थे, सब क्या इसी शादी के लिए थे?
4: जी हाँ। तब तो इस चिट्ठी का कोई उपयोग नहीं है। कैसी चिट्ठी है? इसमें एक दुखियारी की दर्दनाक कहानी है। शादी की आड़ में वो चैन से जिंदगी बसर कर सकती है। आइंदा समाज में सिर उठाकर चलने के लिए चिट्ठी ना रहे तो ही अच्छा है।
5: अरे ये क्या, आपने चिट्ठी फाड़ क्यों डाली?
3: क्या हुआ डॉक्टर साहब?
4: शकुंतला को हमसे भी बढ़कर पनाह मिल गई है।
3: कह क्या रही हैं आप?
4: इस वक्त कुमार स्वामी के संरक्षण में हमारे गांव के स्कंददेव मंदिर में शकुंतला का विवाह हो रहा होगा।
3: ओह, इसीलिए उसने मुकदमा वापस ले लिया है।
4: चलो, उस बेचारे दुखियारे की जिंदगी तो बन गई, हम उसी से संतोष कर लेंगे।
6: अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी हिम्मत के साथ अन्याय का सामना कर सकोगी। तुम्हें अपनी प्यारी सहेली के रूप में पाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है।
4: तुम खुद भोली भाली हो ना, इसीलिए हर एक में गुण ही गुण देखती हो।
5: सहेलियां एक दूसरे की बड़ाई करने में होड़ लगाती हैं भैया।
4: ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, जरूरत पड़ने पर अपना हक छोड़ भी देती हैं।
6: मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारी कोई मदद करूं।
4: मदद? तुम
6: क्यों, शक है? अरे हाँ, उस दिन तुमने हार्ट पेशेंट के एक नाजुक केस के बारे में कहा था।
4: ऐसे तो कई केस हैं उमा, मेरे मामा जी की तरह कई हार्ट पेशेंट हैं जो सुविधा के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते।
6: इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि यही एक अच्छा अस्पताल खोला जाए जिसमें सभी सुविधाएं मैसर
5: हों। नहीं, ये एक बिल्कुल बेहुदा ख्याल है।
4: आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब, मेरे मामा की खाली जमीन गाँव की सीमा पर है। जब तक वो रहे वहाँ मेहनत कर खेती बाड़ी करते रहे। अब मैं उनकी स्मृति में वहाँ एक अस्पताल बनाना चाहती हूँ।
6: अरे भारती, यू आर रियली ग्रेट।
4: वहाँ एक अच्छा अस्पताल बनाने में यदि आप लोगों की मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजीवन आप लोगों की आभारी रहूंगी।
6: भारती, मेरे पिताजी की ऊपर तक पहुँच है। भले काम के लिए अपने परिचय और प्रभाव का इस्तेमाल करना बुरा नहीं है।
4: जिस दिन ये काम पूरा होगा ना, उसी दिन तुम्हारे यहाँ आकर।
6: अरे छोड़ो उस दिन की बात, आज चलती हो कि नहीं?
4: अरे भाई सब्र करो, सब्र करो। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन तो ठाट से मनाया जाएगा ना, तभी प्रीति भोज पर आऊंगी।
6: तुम तो बड़ी हट्टी हो भाई। चलिए जी, हम चलते हैं।
5: अच्छा, अच्छा भाई, फिर मिलेंगे। हाँ,
4: अच्छा, बाय बाय।
7: मुझे तो पहले ही मालूम था।
3: क्या मालूम था तुम्हें?
7: याद है तुम्हें, हमारे डॉक्टर साहब के पास एक मनहूस आदमी आया था।
3: हाँ हाँ, वो आरोग्य स्वामी।
7: उसने डॉक्टर अम्मा से कुछ दवाएं खरीदने के लिए एक नुस्खा लिखकर देने को कहा, पर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया।
3: ये भी कम हटीली नहीं है।
7: ठीक ही तो है, झूठ मूठ नुस्खा सर्टिफिकेट वगैरह क्यों लिख कर दें?
3: ये लोग नुस्खा लेकर क्या करेंगे, इससे क्या फायदा है?
7: तुम नहीं जानती, ये लोग झूठ मूठ मर्ज बताकर दवाएं लेते हैं और घर में रख लेते हैं, फिर उन्हें दूसरों को बेच देते हैं। डॉक्टर से नुस्खा लेकर जाली बिल बनवाकर ऑफिस में पेश कर देते हैं और उसका पैसा ले लेते हैं।
3: छी छी छी, अरे ये तो साफ धोखाधड़ी है। हाँ तो फिर आरोग्य स्वामी का क्या हुआ?
7: डॉक्टर साहब ने साफ साफ कह दिया कि ये तिकड़म हमसे नहीं होगी, पर वो नहीं माना, बराबर जिद करता रहा। आखिर डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाकर उसे बाहर निकाल देने को कहा। मैंने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया।
3: फिर
7: जाते जाते चुनौती देके गया कि बहुत सिर चढ़ी हुई हो, ठीक कर दूंगा, है किस होश में।
3: ये तो बहुत बुरी बात हुई, मुझे तो बहुत डर लगता है।
8: कंपाउंडर
5: जी, अभी आया।
8: सुनो लवक्ष, ये दलाल कंपनी वालों का खत आया है, उन्होंने दवाओं का पार्सल भेजा है।
7: हस मामूल हफ्ते के आखिर में आने वाली गाड़ी में उस पार्सल को भिजवा देने को लिख दीजिए।
8: तुमने सुना है लवक्ष, आसपास के गांव में हैजा फैल रहा है। अचरज की बात यह है कि कोई भी आदमी हैजे से बचने की सुई लेने नहीं आया अब तक।
7: गांव है ना, सुई से कोसों दूर भागेंगे, फिर भी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे। सरकार ने ऐलान करा दिया है कि सबको हैजे से सुरक्षा की सुई लेना लाजमी है।
8: अच्छा लवक्ष, ऐसा करो तुम लोग यहीं रहना। हा?
7: हाँ, हाँ।
8: मैं गांव में जाकर रोगियों को देखती हूँ।
3: हाँ। जी बहुत अच्छा।
9: अरे छोकरे की उछल कूद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
10: एक नुस्खा लिख कर देने को कहा, कहती है कि ये तिगम यहाँ नहीं चलने दूंगी। मैंने समझाया तो मुझे गेट आउट कहकर फटकार दिया।
9: अजी जानते हैं आप,
11: कहीं से कहला फुसला के अपने मामा की जमीन पे इमारत खड़ी कर रही है।
10: छी छी, एक छोकरी ये सब जोर जबरदस्ती कर रही है और हम मर्द होकर चुपचाप देख रहे हैं।
11: ये सब बड़े लोगों की सहायता के बल पे चल रहा है साहब।
10: गांव के लोग भी तो चंदा इकट्ठा करके उसी को भेंट करते हैं।
11: हर हफ्ते किसी कंपनी की गाड़ी पास के शहर से मुफ्त में दवाएं सप्लाई कर जाती है।
10: इसीलिए तो ये लड़की हम लोगों को तुच्छ मानकर हमारा अपमान करती रहती है।
12: आजकल गांव में हैजे का खतरा है ना, वो जगह जगह जाकर लोगों को इंजेक्शन दवा दी दे आती है।
10: इससे ये साबित करना चाहती है कि हमारा धर्मार्थ औषधालय बेकार है, असली दवाखाना तो स्वयं उसका है।
11: अजी बढ़िया ही धर्म सेवा करने वाली, हम भी देख जी कब तक चलेगा।
10: आप क्या कर लेंगे श्रीमान?
11: अजी हमारे छोकरे किस दिन काम आएंगे आखिर? उनसे कह दूंगा ऐसा काम करो जिससे कंपनी की उस गाड़ी का आना ही बंद हो जाए।
10: शाबाश, ये हुई काम की बात। देखें दवाओं के बगैर कैसे इलाज करेगी।
13: डॉक्टर साहब,
14: क्या हुआ भाई? ये खाओ ये खून के डब्बे, क्या हुआ?
13: डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, मुझे
14: एक्सीडेंट हो गया। क्या? कंपाउंडर जल्दी आओ।
13: या खुदा, ये किस शैतान का काम है?
15: शहर से दवाएं लेकर कहीं आ रहा था डॉक्टर साहब, गांव से 2-3 मील की दूरी पर ही 4-5 आदमियों ने गाड़ी को घेर लिया और मुझे खूब पीटा।
13: दवाएं क्या हुई?
15: कावेरी नदी के किनारे की सड़क पर ही ये वारदात हुई थी। सारी दवाएं नदी में फेंक दी। उन बदमाशों ने, अकेला आदमी क्या कर सकता था डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे खूब पीटा और फिर चले गए।
13: अब क्या किया जाए डॉक्टर साहब?
14: ऐसा करो, हाँ। पहले इस आदमी के घाव साफ करके दवा लगाओ।
13: अच्छा,
14: बाद में एक आदमी को शहर भेजेंगे।
13: ठीक है,
15: मैं ही चला जाऊंगा डॉक्टर साहब।
14: नहीं भाई, तुम्हें आराम करना है, तुम कल जाओगे।
16: डॉक्टर साहब, एक बात है।
14: बताओ जानम्मा, क्या बात है?
16: कहने के लिए जबान नहीं खुलती, जी घबराता है, क्या कहूँ डॉक्टर अम्मा?
14: घबराने की क्या बात है, बताओ ना।
16: वो उमा जी के घर में,
13: मर्द नायकम जी के घर में क्या बात है?
16: उनको उल्टी आ गई है, लगता है हैजा है, कोई भी उनके पास जाने को तैयार नहीं है। आपसे विनती करने आदमी भेजा है कि आप एक बार जाकर उन्हें देख आए।
14: कह भेजो, मैं आ रही हूँ।
13: डॉक्टर साहब,
14: कोई बात नहीं है, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बख्श। उनकी खातिर नहीं तो उमा की खातिर उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। आओ हम सब चलते हैं।
17: मेरे बेटे की बुरी हालत है, आप जल्दी चलकर देखिए, बेसुध पड़ा हुआ है, दया कीजिए।
14: आप कौन है? अरे जानम्मा तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ।
16: डॉक्टर साहब, ये रईस कुमार स्वामी की घर वाली है।
14: क्या?
16: कुमार स्वामी के घर?
17: डॉक्टर साहब, मैं उनकी पत्नी हूँ, मेरा इकलौता बेटा बेहोश पड़ा हुआ है, जान का खतरा है और कोई डॉक्टर नहीं मिला, मैं क्या करूं?
14: शहर ले जा सकती हैं आप तो काफी सुविधा संपन्न लोग हैं, शहर के बड़े अस्पताल में बड़े डॉक्टर के पास इलाज करा सकती हैं।
17: डॉक्टर साहब, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद दौड़ी आई, जानम्मा से विनती की कि आपको समझाए।
16: डॉक्टर साहब, ये घर से बाहर कभी नहीं निकलती, अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए यहाँ आई हैं। डॉक्टर, अभी तो आप मरुद नायकम जी के घर से होकर आई हैं, अब इनके घर भी।
14: पर क्या हम यकीन कर सकते हैं? एक बार पहले इसी तरह कहकर मुझे धोखे में डाला जा चुका है।
16: आपकी बार तो अल्लाह बख्श भी साथ चलेगा, मैं तो हूँ ही। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा खाना खाकर आइए, तब तक हम सब चलते हैं।
14: नहीं नहीं, अब वो सब खाने वाने की बात छोड़ो, पहले इनके बेटे को बचाना है, चलिए आइए, जल्दी चलिए।
15: डॉक्टर साहब,
14: हाँ हाँ बताइए, बच्चा कहाँ है?
17: उस कमरे।
14: चलिए आइए, उसी कमरे में चलते हैं।
15: आइए डॉक्टर साहब, इधर से।
14: चलिए।
17: राजा बेटा, बोलता क्यों नहीं? आंखें खोलो बेटा।
14: कंपाउंडर
13: जी, ये लीजिए दवा का बक्सा।
14: लो
18: साहब।
19: दवा खत्म हो चुकी है, शहर से दवा आनी है। और
18: कोई भी दवा बेकार है।
20: डॉक्टर साहब,
19: डॉक्टर साहब,
20: नहीं नहीं नहीं।
18: कंपाउंडर
19: जी,
18: बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया है
19: जी।
18: चाय निकले काफी देर हो चुकी है। ऐसा करो, इसकी इसकी माँ को तुम कुमार स्वामी साहब, धीरज से काम कीजिए। भगवान ने दिया उसी ने वापस।
20: मुझ पाजी को यही सजा मिलनी चाहिए थी डॉक्टर साहब। मैंने दवा लेके आती हुई गाड़ी को रोक के लुटवाया, दवाओं को नदी में फिकवाया, उसी की सजा मिल रही है डॉक्टर साहब, मुझे उसी की सजा मिल रही है।
21: इंसान जैसा बोता है वैसा ही काटता है।
18: कंपाउंडर चुप रहो, जो बदतमीजी है।
19: माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब।
18: कुमार स्वामी जी, जो नहीं होना चाहिए था सो गया। आप धैर्य रखिए और अपनी पत्नी को भी संभालिए।
19: चलो
18: चलो।

0: थोड़ी देर के लिए बाहर चलिए डॉक्टर साहब, आपके दर्शन करने और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं।
1: अरे भाई, कृतज्ञता तो परमात्मा के प्रति प्रकट करनी चाहिए। आओ चलो, फिर भी देखती हूँ।
0: चलिए चलिए।
2: बाप रे बाप, कितने कुछ फल फूल, कितनी फूल मालाएं, वाह रे वाह।
1: भाइयों, ये सब फिजूल खर्ची है, इसके बदले नया अस्पताल बनवाने के लिए चंदा देते तो अच्छा होता।
0: डॉक्टर साहब, वो देखिए, गांव के बड़े काश्तकार मरुद नायकम जी भी पधार रहे हैं।
1: आइए आइए आइए। अरे आपने ये तो तकलीफ क्यों उठाई?
3: डॉक्टर साहब, आपको अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आया हूँ, आपने हम पर बड़ा एहसान किया है।
1: ऐसा मत कहिए, आप बड़े और बुजुर्ग हैं, फिर मेरी सहेली उमा आपकी बहू है, उस नाते भी आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है।
3: छूत की बीमारी मालूम हो जाने पर पैसे के लिए भी कोई डॉक्टर पास नहीं फटकेगा। आपने मेरी जान बचाई।
1: ये तो डॉक्टर का कर्तव्य है, डॉक्टर बनने के बाद बीमारी से डरकर पीछे हटना कैसे संभव होगा।
3: डॉक्टर साहब, आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मेरा पोता हुआ है।
1: अच्छा, बहुत बहुत बधाई।
3: उमा और रतनगिरी दोनों आए हैं।
1: अच्छा।
3: बच्चे के नामकरण संस्कार पर आपको निमंत्रण देने दोनों ही आ रहे हैं। मैं पहले आ गया हूँ, आपको हमारे घर अवश्य आना होगा।
1: अब आप इतने बड़े आदमी होकर खुद चलकर बुलाने आए हैं तो भला मैं कैसे चल सकती हूँ।
3: आप ये फल फूल ले लीजिए और अवश्य पधारिएगा।

0: लगाकर तुम फिर रुक जाओगी।
1: मुझे सूझा ही नहीं उमा कि क्या उपहार ले आऊं, इसलिए भाई यहां से नहीं। उमा
0: वारी वाह, पालने पर पड़े बच्चे को हवाई जहाज भेंट कर रही हो।
2: आप भी खूब है डॉक्टर भारती। अरे बच्चे को क्या अभी एरोप्लेन में बिठा के उड़ाएंगे हैं?
1: नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था भविष्य में ये होनहार बालक देश विदेश घूमे, ऊंची ऊंची शिक्षा पाए, इसी आशा और अरमान के साथ ये भेंट कर रही हूँ।
3: आइए डॉक्टर अम्मा, भोजन तैयार है, चलिए। हाँ अरे ये एरोप्लेन तो बहुत बढ़िया है।
0: आपका पोता इसमें बैठकर देश विदेश घूमेगा, आसमान पर उड़ेगा।
3: अरे ये आसमान पर उड़ता रहा तो धरती पर कौन रहेगा?
0: धरती पर ही रहेगा, धरती पर रह लेने के बाद ही तो आसमान पर उड़ना सीख सकता है।
3: अच्छा अच्छा, आइए भोजन ठंडा हो रहा है, आइए आइए
0: आइए, चलिए
4: चलिए।
0: भाई तुम्हारे नर्सिंग होम का उद्घाटन कब होगा? सुना है शहर से कोई बड़ा आदमी आने वाला है।
1: मैं उमा इस मामले में तुम तो मेरे विचार जानती,
0: फिर भी एक मामूली देहाती आदमी जो मेहनत कश मजदूर है उसके हाथों उद्घाटन होने वाला है, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
1: तुमने पूरी बिल्डिंग नहीं देखी अस्पताल की, उमा देखोगी ना तो खुश हो जाओगी।
5: सुनिए एक मिनट सुनिए डॉक्टर।
0: क्यों क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो?
5: बड़ा अन्याय हुआ है, आरोप स्वामी ने कुछ गुंडों के साथ लेकर नर्सिंग होम की किबाड़ तोड़ डाली और भीतर
0: हो गया। भारती अकेली चली जा रही है, जालिम राक्षस कहीं उसको भी। मामा जी बचाइए हमारी भारती को।
3: अरे कोई है?

0: आई है हमें डराती है, हटा पीछे हटा।
1: हाँ हाँ, अगर आप किसी ने पत्थर फेंके तो मैं उसका खून पी लूंगी।
0: ए लखो चलाओ पत्थर।
2: ये सारी शरारत उस बदमाश आरोग्य स्वामी की है।
3: पुलिस ने ऐन मौके पर आकर सब बदमाशों को पकड़ लिया। मरुद नायकम जी ने इस वक्त बड़ी मदद की हमें।
2: जो तो है, गांव वालों का प्यार भी तो देखो। डॉक्टर साहब के बारे में तरह तरह के सवालों के जवाब दे देकर थक गए हम लोग जानम्मा।
3: डॉक्टर साहब के लिए इन लोगों के दिलों में कितना गहरा प्यार और आदर है।
2: लगता है उमा जी और डॉक्टर रतन साहब तशरीफ ला रहे हैं। अंदर जाकर डॉक्टर साहब को इत्तला दे आता हूं।
3: आइए आइए आइए।
4: डॉक्टर साहब कैसी हैं?
3: आराम कर रही है। चलिए अंदर चलिए। आइए आइए आइए।
4: चलो भारती, तुमने खुद ही पहली मरीज बनकर अस्पताल का उद्घाटन कर दिया।
5: क्या किया जाए, अच्छे काम के लिए पहले कुछ भेंट तो करनी ही पड़ती है। ये देखो ना, ये मेरे माथे का घाव पहली भेंट है।
6: तो डॉक्टर भारती, आपने उस वक्त बहुत ही जल्दबाजी की, आपको अकेले वहां जाना ठीक नहीं था।
5: उस वक्त सोचने समझने या रुके रहने का होश कहाँ था, और फिर कुछ सूझा ही नहीं। नर्सिंग होम वाले मेरे सुनहले सपने को कोई बड़ी परपरता से कुचल रहा है, बस यही बात मेरे भीतर आवेग भर गई, इसी से तैश में आ गई मैं।
4: भारती, मेरे ससुर साहब बहुत दुखी हैं कि वो तुम्हें इस पथराव से बचा नहीं सके, तुम्हारे लिए बड़े चिंतित हैं वो।
5: चिंता की कोई बात नहीं, और तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल से मेरा काम यहीं शुरू होगा। तुम मामा जी को समझा देना उमा।
4: आज तुम्हें मरीज के रूप में लोग यहाँ आकर देख लेते हैं, कल से तुम उन लोगों को मरीज के तौर पर देखना शुरू करना। ये आदान प्रदान अच्छा है, ठीक है ना?
6: अच्छा डॉक्टर भारती, अब हम चलते हैं, वो अब हमें मद्रास जाने की तैयारी भी करनी है ना।
5: डॉक्टर रतनगिरी, आप जब भी इस गांव में आए, कृपा कर हमारे उमा नर्सिंग होम में पधारने का कष्ट अवश्य करें।
6: जरूर जरूर।
5: देखिए, चिकित्सा संबंधी नई बातों का परिचय मुझे अवश्य दिया करें।
6: ओह सर्टेनली सर्टेनली। अच्छा, गुड बाय डॉक्टर।
5: गुड बाय डॉक्टर।

0: क्या सोच रहे हैं?
1: हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये एक छोटे से गांव में इतनी लगन और मेहनत के साथ भारती ने कितना बड़ा और बढ़िया काम कर दिखाया है, मैं उसके सामने हार गया हूँ।
0: मैं सब जानती हूँ।
1: क्या जानती हो?
0: आप जितना समझते हैं मैं उतनी बेवकूफ नहीं हूँ।
1: क्या कह रही हो तुम?
0: याद रखिए, डॉक्टर उमा डॉक्टर भारती की सहेली है।
1: हाँ, लेकिन ये तो सभी को मालूम है।
0: पर ये बात तो किसी को मालूम नहीं, और भारती ने भी कभी नहीं कहा कि उसकी जगह मैंने ली है और उसकी जिंदगी मैं जी रही हूँ।
1: क्या?
0: हाँ, पहला हक उसी का था।
1: ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या लाभ होता इससे?
1: माँ,
0: भारती अपने उसूल की पक्की है। लंबा कंटीला रास्ता पार करके उसने स्वयं अपने जीवन की दिशा निश्चित कर ली। वो एक मिसाल, एक आदर्श बन चुकी है। वो अपनी अंतश्चेतना के अनुसार चलने वाली कर्तव्यनिष्ठ महिला है।
1: बड़ी ऊंची बातें हैं ये उमा।
0: ऊंची नहीं, सही बातें हैं ये। जरा सोचिए तो, गाड़ी का रुकना और छूटना उस सिग्नल के इशारे पर निर्भर होता है। हमारा जीवन भी सिग्नल के खंभे जैसा है। ठीक इशारा पाने पर गाड़ी पटरी पर चलती है, गलत इशारा करने पर गाड़ी पटरी से उतर जाती है। इसी तरह कुछ लोग गलत इशारे पर चलते हैं, कुछ सही इशारे पर। क्या किया जा सकता है, अपनी अपनी मजबूरियां हैं।
1: उमा, आज मैं तुमसे भी हार गया हूँ।
0: हार मान बैठना पुरुष का लक्षण नहीं है डॉक्टर साहब। वो भी एक विश्वविख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल गलत बात है।
1: सिर्फ एक जगह हार मानना गलत बात नहीं।
0: किस जगह?
1: वो प्रेम की दुनिया में।
0: डॉक्टर साहब, सिर्फ संवेदन और भावना तक ही सीमित ना रहिए, दिल टटोलना भी सीख लीजिए।

कंटीला रास्ता। अभी आप सुन रहे थे इस नाटक का दूसरा एवं अंतिम भाग, नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नेत पाते का। यह था हिंदी रूपांतर। रूपांतरकार ए शौर्य राजन, निर्देशक थे वीपी दीक्षित भटुक, और ये केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ווסיק תומקיה. נולן גנסם פורפי פריה פורה סמי ספן, ביוטה טיפי ארג'וסינה.
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এই ঘণ্টাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই ৰূপজ্যোতি বৰুৱা। ভাৰতে জুনত স্বদেশী C-295 শ্ৰেণীৰ বিমানৰ প্ৰথম উৰণেৰে বিমান পৰিবহণ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ সাফল্য অৰ্জন কৰা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আকাশবাণীৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ কৰিছে। অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হাৰগিলা চৰাই সংৰক্ষণত জড়িত অসমৰ হাৰগিলা আৰ্মীৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষেধক দিৱস পালন কৰা হৈছে। ৰাজ্যত গ্ৰীষ্মবন্ধৰ ভিতৰতে প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ বদলীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছে। এতিয়াৰে পৰা চাহ বাগিচা শ্ৰেণীৰ ভূমিও কৃষক পঞ্জীয়ন পৰ্টেলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অসম লোকসেৱা আয়োগ APSCত প্ৰমাণ পত্ৰ পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল, স্বচ্ছ আৰু অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য কৰি তোলাৰ বাবে ডিজি লকাৰৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থীৰ তথ্য পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ভাৰতৰ তাৰকা খেলুৱৈ কিদাম্বি শ্ৰীকান্তে আজি US অপেন বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ পুৰুষৰ ছিংগলছৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি গ্ৰুপ এৰ ফাইনেল খেলখনত ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া মুখামুখি হ'ব। আৰু ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত আজি নিশা 12:30 বজাত হ'বলগীয়া নকআউট পৰ্যায়ৰ এখন খেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকা কানাডাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। এই ঘণ্টাৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি বুলেটিন বিয়লি 5:15 বজাত।
2: सीरियल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारतीय खोज में, उसके बारे में बताइए।
3: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसा मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
2: बिल्कुल,
3: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अंबेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी, जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया, उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया, जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था, तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए, और उन्होंने बहुत एंजॉय किया, बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस, हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
2: हैं, अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
3: हाँ, वो
2: आप
3: तो
2: किसी भी विषय का जिक्र करें,
3: करेक्ट,
2: तो वो पेज खुल जाएगा,
3: करेक्ट,
2: वैसे जिसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
3: हाँ हाँ, वैसे वैसे तो he himself was a सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
2: yes.
3: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट. तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है. तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो, तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया. पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए. तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो.
2: एक व्यापक दृष्टिकोण,
3: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफ कोर्स. और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अंबेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है. तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं. और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी, जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे. और बिकॉज अगेन श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे. तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस, ऐसा मैं कहूंगी. जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मैच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था. और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का.

0: सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारतीय खोज की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी की आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं। अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसे कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है, और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी। वो
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है। मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: 3.5 दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलेंगे। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। तो मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बंबई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं वहां पर प्रीमियर है, तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कुछ है, 3-3.5 सीन है। 3-3.5 सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो, ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है। बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा तब दादाजी ने कहा, ऐसे लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बंबई और देखो क्या हुआ है।
0: अरे
1: उसके बाद फिर हम बंबई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बंबई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
0: देर से आती थी,
1: एक डेढ़ साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: वाह वाह।
1: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
0: गिर जाते।
1: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में किराए का घर जो था वहां पर। तारा पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं देता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
0: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
1: हाँ,
0: और रातों रात बंदा स्टार बन जाता है और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बंबई में क्या धमाका हो चुका है।
1: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे तो वहां पर किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
0: इतने फोन आने लगे।
1: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था। पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
0: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है।
1: एक्चुअली तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
0: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
1: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल

0: की डेट चाहिए, फिर भले ही वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था, मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था।
1: हाँ हाँ,
0: ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया, नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं है। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला, उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए। पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इरेटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं
1: थी, उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरे 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है।
0: 2003-04 की बात कह,
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले।
1: वाह।
0: और लिखा था आनंद विनायक जातेगावकर करके, बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है, ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने की प्रोसेस में थे, और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे, पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी।
1: जी।

0: लेकिन मेरी बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी
1: समझदार
0: थी,
1: थी।
0: समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी, वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली, लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे, तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे। तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयाँ होती थी ना, वो मम्मी बनाती थी,
1: अच्छा तो उससे
0: तो उससे अंदाजा था शायद पापा आजकल में आने वाले हैं।
1: वाह वाह वाह वाह क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर गाँव होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें
2: ইমান পৰে শ্ৰোতাই বিবিধ ভাৰতীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানসমূহ শুনিলে। এফ এম বেণ্ডৰ 102.7 মেগাহৰ্টজ চতিয়া আকাশবাণী নগাঁও আৰম্ভ কৰিছোঁ যুৱ তৰংগ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करे। श्री मोदी ने कहा कि भारत के दृष्टिकोण में सेशल्स का एक विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: आई केम हियर बिकॉज आई बिलीव दैट सेशल ऑक्यूपाइड अ स्पेशल प्लेस इन इंडियाज विजन फॉर द इंडियन ओशन। टुडे एज आई रिटर्न हियर आफ्टर अ डेकेड दैट कन्विक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड आई एम डिलाइटेड टू ज्वाइन यू एज यू सेलिब्रेट 50 ईयर्स ऑफ योर इंडिपेंडेंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड द पीपल ऑफ सेशल ऑन दिस स्पेशल ओकेजन।
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armani and the people of Seychelles for honoring me with the guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरबाइनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू हॉराइजन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, जितेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वो आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के अनुरोध के बाद जारी किया गया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को होर्मुज जलडब्रू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में की गई। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच दो T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच आज बेलफास्ट में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। शुक्रवार को पहले मैच में भारत को आयरलैंड से 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू, दिल भी खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्षा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: ইমানপৰে শ্ৰোতাই এটি বৃন্দগীত শুনিলে। গীতৰ কথা আছিল ৰেণু মহন্তৰ। এয়া আকাশবাণী নগাঁও। ক্ষন্তেক পিছতেই লণ্ডনৰ লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপৰ ভাৰত বনাম অষ্ট্ৰেলিয়া খেলখনিৰ চলন্ত বিৱৰণী আকাশবাণী দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব। ইয়াৰ মাজতেই 8:45 সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 News@9 আৰু 9:25 নিশাৰ আঞ্চলিক বাতৰি আমাৰ কেন্দ্ৰৰ যোগে ৰিলে কৰা হ'ব।
1: ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: इन बिटवीन एंड देन और आई थिंक शी इज रिटायर्ड एंड वी नीड टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन बिटवीन मे बी शी हैज चेंज शी हैज रिटायर्ड हर सो 19 ओवर्स गॉन 147 फॉर 3 जमाइमा गोज आउट एंड इन कम्स रिचा घोष She knows that Indian management knows that they need to maximize the 6 balls as much as they can score. So Harmanpreet is a non-striker end of 38 runs of 23 deliveries and Jemima walks herself out of the to the pavilion and in comes Richa Ghosh this time and she goes it from ball number 1 and over she took the aerial route by the time ball runs to Ashley Gardner she has the time to take for 1 so 148 for 3 Last 5 balls of this over, 7.72 runs, last 13 runs came in the last over. That actually has prompted Indian scoring rate to 7.72 runs per over. And there's a lot happening in the middle with Jemima telling what's happening with the ball. Ball is not coming nicely onto the bat. So they think they have enough on the board. But with Australians, you push the envelope as much as you can. This time Harmanpreet dances down the wicket and lobs it over for 6. And that 6 brings India's 150. India are now 154 for 3. Harmanpreet actually sends the ball, a shorter delivery, reaches the ball and lofts it over the bowler's head for a mighty one of the huge sixes of this match. And that took India total to 153. Harmanpreet on 44. 24 deliveries she has paid. Minilo from nursery and this time to Harmanpreet. Again, lofts it down. We need to see has it got enough elevation and it does. One more 6. Ye laga, abha ka chakka. That brings 50 for Harmanpreet. This is the 50 number 6 for her. 2 sixes back to back. And Harmanpreet actually playing the skipper innings. That brings a 50 in just 25 deliveries that she has faced. And as we were guessing that anything around 160, Virender Ji would be a good total. And last 2 overs, Indians were able to switch the gear with Harmanpreet leading that with 160 for 3 and still 4 more deliveries to go in this over.
3: कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का बल्ले का फॉलो थ्रू हरमनप्रीत का। एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, कवर्स के ऊपर से खेला और कैच छिटक गया। 6 रन भारत के खाते में।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: 3 sixes in 3 deliveries and Indians won't mind that catch would have been taken, that's okay, but they need to maximize 166 now. 3 balls, 18 runs has cost to do a bowler who's been so economical throughout this match, but Harmanpreet is now changing the whole scheme of things and match tilting. You can see from the face of the Australian skipper, India 19.4 overs, 166 for 3 and Harmanpreet is now 56 in 26 deliveries with 6 fours and 3 sixes. What she can do, 2 more deliveries to go. She dances down again, plays it and but this time she actually lofts the ball straight into Ellis Perry and she makes no mistake in taking the catch and that brings to downfall of Harmanpreet. But she knows, India knows, the dressing room knows and the fans knows that she has done her job. Birendra Ji,
3: कमाल की पारी, कमाल की बल्लेबाजी। उस समय में जबकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे भारत के ऊपर, उस समय में प्रहार करना, बड़े शॉट्स खेलना जो कि मुश्किल लग रहा था, हरमनप्रीत ने इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की है और शानदार पारी खेलकर वापस आती हुई 166 भारत 4 विकेट पर 19.5 ओवर के बाद। 56 रन की ये पारी 27 गेंदों में 6 चौकों और 3 शानदार छक्कों की मदद से।
1: Quick change in gears by Harmanpreet actually build this partnership for 19 runs and 6 deliveries that they have faced and Yashtika will face the last ball of this match. 19.45 overs gone, 166 for
2: for 4. And Harmanpreet, actually that was expected. She hasn't had a great tournament so far in this World Cup. A 50 was expected, and law of averages caught up, as you would say, and then she scored a 50 in a very, very important game for India. Yashtika Bhatia comes in. She will face the last ball of Sophie Minilu, who's been very, very critical. 4 overs, 46 runs she has given. What she does, we need to see. Deepthi Sharma comes in and actually glances this ball down to the left side, and this ball goes for the boundary. So a boundary here, 170 for 4 India, ended the inning in 20 overs. Virendra ji, what a score it is.
3: Achha lakshya hai Bharat ke liye. Aur
4: ye laga Abha ka chauka.
3: ये ओवर भारत के लिए शानदार रहा और 3 छक्के 1 चौका 170 रन 20 ओवर के बाद. और ये देखना होगा कि चौका हुआ है कि नहीं, अंपायर इस बात का निर्णय करेंगे. 19.5 ओवर में 166 रन भारत के बने हैं और शायद इसका निर्णय अभी होना है कि आखिरी गेंद पर जो कि दीप्ति शर्मा ने खेला था उस पर 4 रन लगे हैं कि नहीं. शानदार पारी हरमनप्रीत द्वारा, आरंभक बल्लेबाजी अच्छी रही भारत की तरफ से. पावर प्ले में जिस तरह से स्मृति और शेफाली वर्मा ने बल्लेबाजी की, 66 रन की पहली विकेट की साझेदारी थी जिसकी वजह से भारत की पारी मजबूत हुई. मगर उसके बाद से जिस तरह की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया ने की, जिस अनुशासन से गेंदबाजी की गई, विकेट के बीचों बीच सटीक गेंदबाजी और तेज गति की गेंदबाजी में जो गति परिवर्तन किया गया उसको देखते हुए बांध कर रखने में काफी हद तक कामयाब रहे थे. तो आखिरी गेंद का ये निर्णय कि वो 4 रन ही थे. 170 भारत का स्कोर, 171 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने. दूसरी पारी जब शुरू होगी उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे. तब तक सुनिए हमारा कार्यक्रम फ्री हिट 20.
5: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात.
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है.
5: यह होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की.
6: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है.
5: तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर.

0: another do or die game against Australia, another Harmanpreet half century as India snatched momentum in the final over, slamming 23 to take their total to 170, having retired out Jemima ahead of the over. Hello and welcome to Free Hit 20. I am Megha and joining me in studio is Anand Srivastav.
1: हमारे साथ तीन विशेष मेहमान हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्रो बोस हैं, बीसीसीआई के कोच रविंदर जी हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रही ख्याति गुलानी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया।
1: हरमनप्रीत कौर की शानदार अर्धशतकीय पारी, स्मृति मांदना, शेफाली वर्मा और जमीमा का स्ट्रांग कॉन्ट्रीब्यूशन, 170 पर 4 भारत का स्कोर है। ख्याति, आपसे शुरू करेंगे, टोटल को कैसे देखती हैं जब 10 ओवर के बाद हम 74 रन बना चुके थे?
3: डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोर। आई थिंक नाउ बॉलर्स विल गेट कुशन एंड नाउ इट्स नाउ देयर पार्ट टू शोकेस देयर स्किल्स नाउ। आई गेस दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग इनिशियली दैट 170 विल बी अ गुड स्कोर एंड इट्स स्पॉट ऑन।
0: Soumitro, it was an innings of 3 halves where India got off to a flyer in the power play overs, slow down in the middle overs, and then came the final over.
2: Very unusual, because normally you will see the middle overs, you will score better. But nevertheless, 170 is a very good score. We were talking about 180, which was par, which we thought was par for the course. But a 170 in this particular Lord's wicket, jahan pe ball was coming a little bit slower. And the Australians, you would have noticed ki jis tarah se line and length, and they were using the pace of the ball, they were forcing the batsmen to generate the pace to score the runs. Aapko aur ek cheez shrota ko batana chahiye ki ye Lord's ground mein slope hai. Once you beat the infield, then... But another thing which the Australians will not be happy is the way they drop the catches.
1: 56 रन हरमन ने बनाए, 34 जमीमा के नाम, शेफाली के नाम 34 और स्मृति ने भी 38 रन बनाए। रविंदर, आखिर के दो ओवर में 36 रन भारत की पारी को मोमेंटम प्रदान कर गया, लेकिन उससे पहले की अगर थोड़ी चर्चा करें, रन बॉल खेलती नजर आई स्मृति, रन आउट महंगा पड़ा?
4: डेफिनेटली रन, और वो जेमी, खासकर जेमीमा को, जेमीमा से उम्मीद थी थोड़ा सा फास्ट खेलती वो। ये तो लास्ट में हरमनप्रीत ने कवर कर ली दो ओवर में 36 रन बना के। अगर ये नहीं होता तो आप 150 के आसपास स्ट्रगल कर रहे होते। वहाँ पे आपको देखना, जब विकेट्स आपके हाथ में है, आप रन बॉल करी, वहाँ पे आपको चांस लेना चाहिए था। रन बॉल तो एक नॉर्मल एवरेज गेम है। इस गेम में अगर आपको, जो आपका एक डू ऑर डाई मैच है, उसमें आपको पता है कि 180 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए, और रन बॉल आप खेल रही हैं उस समय, और विकेट नॉन ऑफ विकेट हाथ में है, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग कर गए। लेकिन हरमनप्रीत ने जो लास्ट ओवर में 23 रन लिए, वो एक काफी लास्ट में मोमेंटम शिफ्ट हो गया।
0: ख्याति, इंडिया वुड हैव बीन मलिंग द रिटायर्ड आउट डिसीजन अर्लियर एज वेल।
3: Yeah, they have been taking this decision. I don't know what is the thought behind this. Maybe they must be thinking that when Richa will come, she can, you know, dominate the bowlers. But I seriously think that was not required at that moment.
1: सौमित्रो, अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की थोड़ी चर्चा करें, लूसी हैमिल्टन के 3 ओवर में 17 रन, एलिस पेरी के 1 ओवर में 7 रन, जॉर्जिया वेरहम के 3 ओवर में 16 रन, काफी किफायती गेंदबाजी, लेकिन किसी का कोटा पूरा नहीं करवाया कप्तान ने।
2: यस, इनफैक्ट आप देखो, ये पहला 10-11 ओवर में दे हैड यूज्ड 6 बॉलर्स, तो नेचुरली सोफी वाज ट्राइंग टू रोटेट द बॉलर्स, क्योंकि एक एक ओवर एलिस पेरी जैसे सीनियर बॉलर को एक एक बॉल देना। बट द पॉइंट इज, यू ऑल्सो हैव टू अप्रिशिएट कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन we're using the conditions and playing the strokes. Khas karke, it was very clear ki, you know, Smriti Mandhana, jis tarah ka classical batsman hai, wo apna hips over the hips khelenge, on the slides khelenge, push karenge, flicks marenge, or exactly Shefali would use our power. And she was quite successful, in and out shots khel raha tha, aur runs bhi aa raha tha. Waise in and out, inside out shot khel se out bhi hua hai, magar they had got the runs. Initial jo, we were saying कि विकेट पकड़ के रखो, और उसकी वजह से कोच साहब ने बोल रहा था कि विकेट पकड़ के रखो और फिर आप एक्सेलरेट करो और शिफ्ट करोगे, और उसी ने वैसे ही किया। आपने जैसे बोला कि मिडिल ओवर्स में हाँ थोड़ा सा हमारा एक्सेलरेशन कम हो गया था, बट लेट हरमनप्रीत 207 स्ट्राइक रेट, वी वर टॉकिंग अबाउट हरमनप्रीत स्ट्राइक रेट, and today she has proved again. But sirf ek hi cheez hai jahan pe usne 50 banaya, India har mein, always in the losing side. Hopefully the equation will change today.
0: You highlighted that in the pre-show as well. Now, from one captain to the other, Sophie Molino, in fact, introduced herself in the 10th over. This is the 18th time when she's gotten a wicket in her first over itself. Lekin aakhri ka jo over raha, Ravinder, kaafi mehengi rahi wo 23 run diye.
4: देखिए ये स्पिनर्स के लिए नॉर्मली आजकल आखिरी ओवर कराया नहीं जाता, नॉर्मली मीडियम पेसर्स को रिकमेंड किया जाता है और प्रेफर किया जाता है. मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने आखिरी ओवर क्यों किया, क्योंकि लास्ट में वो अटैक करेंगे आपके पास, उनको विकेट्स हैं. देखिए स्ट्रेटजी पहले यही थी कि आपके पास विकेट्स हाथ में होनी चाहिए, आप उसको बढ़ा सकते हैं. बिल्कुल जो प्लान था ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर दिया था. वो दो चार रन के बीच में जो दो ओवर जमीमा के साथ रहे, उन अगर ओवर को छोड़ दिया जाए, अगर वो ढंग से करते रहो 180 प्लस होता. लेकिन लास्ट में आपने सही बोला, स्पिनर्स को मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए था.
1: ख्याति, अब बात थोड़ी भारतीय गेंदबाजी पर कर लेते हैं. श्री चरणी इस विश्व कप में भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं. चार मुकाबलों में 12 विकेट 5.31 की इकोनॉमी से लिए हैं और 19 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है. दीप्ति शर्मा ने पहले मैच में 5 विकेट लिए थे, इन दोनों पर बड़ा दारोमदार होगा.
3: डेफिनेटली अगर आप देखेंगे श्री चरणी जो है वो फर्स्ट ओवर भी डालती है, मिडिल ओवर्स में भी आके वो विकेट्स लेती है और डेथ ओवर.
5: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री अभी आप सुन रहे थे. आकाशवाणी का
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है. प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया. प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है. भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया. यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत. और महिला टी20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया. वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो. श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है.
7: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है. भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले. Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
6: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है. श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा. उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे. दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया. प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की.
7: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
6: सेशल्स के राष्ट्रपति हरमिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
7: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
6: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
7: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
8: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,00,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत किस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
6: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
9: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
6: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
10: असम के धेमाजी जिले में सीमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गाँव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहाँ फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है, हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation-building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations of a recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heat wave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
7: Meri Seychelles ki yatra ka sandesh spasht hai. Bharat aise Hind Mahasagar ki kalpana karta hai jahan samudri suraksha ke saath आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
11: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talk with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields including agriculture, finance, space and health. Prime Minister Modi expressed happiness that an MOU has been signed to implement UPI in Seychelles.
7: Hum digital public infrastructure mein Bharat ke safal anubhavon ko Seychelles ke saath saajha karenge. और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
11: He said the India-Seychelles partnership in the health sector has stood the test of time. He said the MOU signed on Jan Aushadhi today will help provide quality and affordable medicines to the people of Seychelles. Addressing the gathering, Seychelles President Hermini said maritime security in the Indian Ocean region remains central to bilateral ties, with the two countries reaffirming their commitment to counter piracy, drug trafficking, illegal fishing and cross-border crime.
12: A particularly significant milestone is the groundbreaking inauguration of the Professional and Technical Education Center. This India-assisted project will equip Seychellois youth with world-class vocational training, strengthening our capacity building. My deepest gratitude to Prime Minister Modi for this transformation.

0: T20 International of the two-match series in Belfast. In reply, India were 54 for 4 in 8 overs when reports last came in. The rain has currently halted play. Ireland lead the series 1-0. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. Says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honoured with Seychelles' highest distinction, Guardian of the Blue Horizon. In Mann Ki Baat program on Akashwani, Prime Minister Modi asserts power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. New Delhi rejects Islamabad's allegations over recent incident in Karachi, terming them baseless. Europe continues to experience record-breaking heatwave. France reports over 1,000 deaths. In cricket, India set a target of 171 runs for Australia in their final Group A match of the Women's T20 World Cup in London. And in men's cricket, India gets a target of 155 runs by hosts Ireland in the final T20 International in Belfast. And that's all in the news at 9. Good night.
1: Akashwani ka कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जा रहे क्रिकेट मैच की ऑफ ट्यूब कमेंट्री आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: लॉन्ग ऑन एरिया फॉर सिक्स, ये लगा आभा का छक्का। दैट सिक्स विल put pressure on Shefali. Very first ball of her went to six, and that brings Australia to 43 for one. Fabian, there's a chance of appeal, but no, I think there's the ball is rushing toward the boundary, so is Renuka, cuts it off, and the batsman and the player has enough time to take two. Litchfield, rather Beth Mooney was looking for third run, but Litchfield wasn't interested. So 45, 5.2 overs gone, 45 for one, and Australians are getting into their rhythm. They need to pick up wickets, and that's what is in the back of the mind. This time, Litchfield quite early switches her side. She reverse sweeps it, actually changes from a left-hander to right-hander quite early before the ball been bowled by Shefali, and plays it over the circle for two more. So that two gives 10 already in this over, and score moves on to 49 for Australia. So 47 for Australia for one. 5.3 overs, 47 for one. Litchfield, 21 of 19 deliveries. This time again looking for drive, but Shefali not giving enough width, and that resulted in a dot ball. So four balls, 10 runs of this Shefali's over. First over she just gives single, but now in this over she has already consisted 10. Maybe next over we can see the leading bowler of the World Cup, Shri Charney, coming in. This time again, Litchfield was quite intentional that she wanted to go for drive every over. They want to maximize the power play, the runs they can score in the power play. They wanted to do that, but Shefali outsmarted her by checking her length and not giving any width. Another dot ball resulted. So 5.5 overs, 48 for one, and it's needs to be seen what is there in the store for the last ball. This time again, drives it. There's a chance of run out. Could be if there's a direct throw, but no, misses. Renuka at short fine leg, looking for a drive ball, went to Renuka. She was quick, but so were much more quicker with Australians. So 6 overs gone, power play 49 for 1, chasing 171 Australia.
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: 6 ओवर्स का खेल हो चुका है, टाइम आउट ड्रिंक्स का समय 49 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं। 171 रन का लक्ष्य है, ऑस्ट्रेलिया को 122 रन चाहिए 84 गेंदों में। खेल इस समय अश्विन पूरी तरह से संतुलित है अगर देखा जाए तो। रेणुका सिंह ने एक सफलता प्राप्त जरूर की है, मगर अपनी गेंदों में वो पहले ओवर में ज्यादा दिशा को काबू में नहीं रख पाए थे, अनुशासित नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका मिला। और क्रांति गौड़, जिनके पास गति है और हवा में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, इस वजह से आक्रमण करने पर और स्ट्रोक लगाने में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को, जिसकी वजह से उनके एक ओवर में ही 12 रन बटोर लिए थे। और शेफाली वर्मा, जिनका पहला ओवर काफी अच्छा रहा, एक रन दिया था उन्होंने, मगर दूसरे ओवर में उनकी फ्लाइट को, उनकी वेरिएशंस को भांपते हुए अगले ओवर में फिर से प्रहार करने पर सफल रहे थे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। तो काफी संतुलित है खेल इस समय, भारत को विकेट्स चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए साझेदारी।
2: Precisely, but what India has managed to do with those two overs, where in just single runs were scored, they were able to put breaks on Australians. Otherwise, they were scoring very freely. So look at six overs, 49. The required run rate is still around over eight runs per over, which was earlier 8.71 required. So they need to be consistent. And we know in a game of T20 where there's not much of margin for errors, if Indians stick to the line and length, they should be able to build pressure, because once you get a wicket, then I think there'll be more pressure in Australians, and that's what would be discussed in the huddle during the drinks break. There'll be some messages passed on by the team management to see what can be done. And Birinder ji, mind you, we haven't used Sri Charni so far. She's been the most successful spinner in this World Cup, picking up 12 already in the matches, four matches she played, and she can be very lethal against Australians.
4: और यहाँ से खेल काफ़ी दिलचस्प होने वाला है अश्विन, क्योंकि पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं, भारतीय गेंदबाजों के पास सुरक्षा के लिए फील्डर्स होंगे, बाउंड्री पर चार फील्डर्स होंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के बारे में सोचेंगे, और इन परिस्थितियों में दीप्ति शर्मा और श्री चरनी किस तरह की गेंदबाजी करती हैं और किस तरह की अनुशासित और प्रभावशाली गेंदबाजी रहती है, ये काफ़ी ज़्यादा तय करेगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर कि वो आक्रमण ना कर सके, ज्यादा रन ना बटोर सके और दबाव वापस उनके ऊपर आ सके।
2: एंड देन वी हैव राधा यादव आल्सो विद द स्पिन अटैक टू ऐड टू इट, सो इंडिया हैज क्वाइट अ फ्यू बॉलिंग ऑप्शंस। एंड हियर कम्स श्री चरनी, बिरेंद्र जी विद हर नेक्स्ट ओवर।
4: श्री चरनी अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई फ्लाइटेड स्टंप्स के बीचों बीच, कदमों का इस्तेमाल करके इसे ड्राइव किया था बल्लेबाज लिचफील्ड ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दो रन भागने का मौका, 50 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। श्री चरनी, जिस तरह की अश्विन ने बताया कि सबसे सफल गेंदबाज हैं भारत की इस वर्ल्ड कप में, 12 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं 5.31 की इकोनॉमी से। ओवर की अगली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास, हवा में गेंद जिसे लपकना चाहती थी ऋचा घोष, मगर गेंद उनसे काफी दूर, लगता नहीं है कि बैट से लगी हो, बैट से टकराई थी ये गेंद, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं, अच्छी गेंदबाजी श्री चरनी द्वारा। इस गेंद में कम फ्लाइट की थी उन्होंने, जिसकी वजह से अपने रिवर्स स्वीप को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाई थी लिचफील्ड। ओवर द विकेट श्री चरनी की यह गेंद से उठा दिया कवर्स के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ से भागी क्रांति गौड़, जब तक गेंद को फील्ड करेंगी एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से, दो रन भागने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, 52 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक विकेट पर। इस ओवर की तीन गेंदों में आक्रमण करने का प्रयास किया है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने, कदमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लाइट को अच्छे से भांपा जा रहा है, अच्छी क्रिकेट लॉर्ड्स के इस मैदान में। 52 पर एक ऑस्ट्रेलिया 6.3 ओवर्स के बाद। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये चौथी गेंद स्टंप्स के बीचों बीच, रिवर्स स्वीप का प्रयास, पैड से टकराई गेंद, LBW की अपील, मगर गेंद लेग स्टंप से बाहर है, ये देखते हुए अंपायर का निर्णय नॉट आउट। हरमनप्रीत ने हालांकि पूछा गेंदबाज से कि रिव्यू लिया जाए कि नहीं, श्री चरनी ने नाम इसे हिलाया क्योंकि वो जानती हैं कि गेंद लेग स्टंप से बाहर थी। लेग बाय, एक अतिरिक्त रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, 53 ऑस्ट्रेलिया एक विकेट पर 6.4 ओवर्स के बाद। 171 रन का लक्ष्य, भारत का यह मुकाबला जीतना जरूरी अगर सेमीफाइनल में जाना है तो, और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही अपने पूल में सबसे पहले नंबर पर 8 अंकों के साथ। वेथ मुनी 18 पर सामना करेंगी श्री चटनी का। इस ओवर की पांचवी गेंद गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, ऑन ड्राइव मिड विकेट क्षेत्र पर, एक रन फिर से भागने का मौका, 54 एक विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के 50 रन में 50 रन की साझेदारी लिचफील्ड और मुनी में 39 गेंदों में। श्री चरनी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर उठा दिया इसे लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर, देखना है कहां तक जाती है, यह दूसरी सफलता भारत के लिए लिचफील्ड के रूप में,
5: बड़ा शॉट खेलना चाहती थी, ठीक से बल्ले पर नहीं आई गेंद और स्मृति ने कोई गलती नहीं की इस कैच को लपकने में। जोश आता हुआ भारत के खेमे में, उत्साह आता हुआ इस सफलता के साथ लिचफील्ड जो कि काफी आक्रामक खेल

0: কৰি কামৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। 9 কোটিৰো অধিক টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা পুঁজিৰ অধীনত ৰূপায়ণ কৰা এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে যমুনাত জলক্ৰীড়া আৰম্ভ কৰাৰ উপৰি দুয়োকাষে ফেন্সিং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। লণ্ডনৰ লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ গ্ৰুপ এৰ অন্তিমখন খেলত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক জয়ৰ বাবে 171 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। ভাৰতে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 4 উইকেটৰ বিনিময়ত 170 ৰাণ কৰে। আমালৈ বাতৰি অহা পৰলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই 6 অভাৰত 1 উইকেট হেৰুৱাই 50 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেদি আছে। নিশাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল।
1: एक अच्छी बात है कि वो स्टंप्स के बीचों बीच गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज को ज्यादा बाजू खोलने का मौका नहीं देते हैं और गुड लेंथ पर उनका टिप्पा रहता है अराउंड द विकेट। ये गेंद इस बार इस गेंद में फ्लाइट थी, ओवर पिच जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर पेरी ने और गैप मिला और गेंद सीमा रेखा पार कर गई। 4 रन। ये लगा आभा का चौका। श्री चरनी जो कि सटीक अनुशासित गेंदबाजी कर रही थी, ये ओवर पिच गेंद बल्ले के बिल्कुल नीचे जिसे खूबसूरत तरीके से पैरी ने कवर ड्राइव किया था कवर्स क्षेत्र में और गैप भी मिला उन्हें और 4 रन भी। 68/2 इस समय ऑस्ट्रेलिया 8.3 ओवर्स के बाद। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से पैरी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, गुड लेंथ गेंद, पैड से टकराई, LBW की अपील मगर कोई प्रभाव नहीं इस अपील का अंपायर के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद घूमी नहीं, टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती हुई और इसे ड्राइव करना चाहती थी पेरी मगर पैड से टकराई। भाग्यशाली रही कि निर्णय उनके पक्ष में रहा। 8.4 ओवर के बाद 68 ऑस्ट्रेलिया 2 विकेट पर। श्री चरनी अराउंड द विकेट एक बार फिर से, गुड लेंथ गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर इसे स्टीयर किया शॉर्ट थर्डमैन क्षेत्र पर, दीप्ति है वहां पर चुस्त और मुस्तैद, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, चौका लगने के बाद श्री चरनी द्वारा अपनी गेंदों को गुड लेंथ पर डालती हुई और ऑफ स्टंप पर रखती हुई। राउंड द विकेट एक बार फिर से, इस ओवर की आखिरी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया गया मगर सीधा कवर्स क्षेत्र पर खड़े फील्डर के हाथ में। 9 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 68 2 विकेट पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
4: ली। जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So Shri Cherry doing what she is known for best. She has just given 5 runs at an average of 2 overs, 2 overs, 10 runs and an important wicket of Phoebe Litchfield that she picked up in the last to last over. It's over number 9 which has gone by 68 for 2. Beth Mooney on 22 of 19 deliveries. Alice Perry with 2 boundaries, glorious boundaries, 11 of 8. This time in the air, look, we need to see if there's anyone to catch it, and it does. This time Radha Yadav, butterfinger, hails it and she roars loudly with that wicket. So another wicket fell down in terms of Beth Mooney. 9.1 overs, 68 for 3. Beth Mooney gone, the danger lady who loves to score against India, and Deepti Sharma, who's been the most successful bowler against Australia, picking a maximum wicket so far. Anyone from India, it's been Deepti, and she manages to pick the wicket off Beth Mooney. So 68 for 3. This is 10th over in progress, mind you, and the run rate now climbing to 9.51 runs per over. That brings in more pressure to Australians, and Indians are completely bossing this game. Birinder ji
1: और अश्विन, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि खेल का जो ये पड़ाव है ये काफ़ी दिलचस्प है, यही वो समय है जब भारत ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना सकता है, क्योंकि भारत के ये जो दो स्पिन गेंदबाज हैं श्री चरनी और दीप्ति शर्मा, इस वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और उसी का ये परिणाम देखने को मिला कि फ्लाइटेड गेंद थी बेथ मूनी के लिए, फ्लाइट में बीट किया, इसे ड्राइव करना चाहती थी, गेंद से दूर रह गई और इसे लॉन्ग ऑन पर बड़े अच्छे तरीके से राधा ने इस कैच को पकड़ा और इस तरह से ये सफलता मिली भारत को और ऑस्ट्रेलिया की 3री विकेट बेथ मूनी, जो कि जिम्मेदारी से बल्लेबाजी कर रही थी, वापस आ चुकी है।

0: in a full length delivery, they are trying to make batsman the batter reach to the ball, and with that wicket, Deepthi Sharma became the highest international wicket taker in the women's history with 356 wickets she has taken already, and she is the one now. She got with this wicket over Julan Goswami of India. 356 wickets she has taken, two dot balls, one wicket and one dot. This time again, Deepthi Sharma, quick and delivery on the onside. They're looking for single, they should be pushing for two, but so quick was Harmanpreet there, and with that just resulted in a single. So new batter is Ashleigh Gardner, who's on strike. And Australia 70 for 3, 69 for 3 in 9.3 overs. This time Ellis Perry right on the top, she plays it, but there's someone with one bounce. Radha Yadav was looking for a catch. She knows that she could have taken that stride earlier, but then able to pick the ball on the first bounce, throws it quickly to the back to Deepthi Sharma, resulted in one. There's 70 for 3, 9.4 overs gone. There's another 101 runs required in 10.2 overs. This time Ellis Perry on the back foot drives it down. Deepthi Sharma dives it but couldn't cut off the single, and batsman and the batter has time to cross for one more single. So Deepthi Sharma has been economical this over. She's just given 3 runs and picked up a very, very important wicket of dangerously looking Beth Mooney. So Indians are striking when there was a little bit of partnership getting built, and they're striking at the right moment. This time again, she follows the batsman. She was looking for off drive and moved on to the onside, but Deepthi Sharma quick to understand that. So 10 overs gone, 73 for 3 Australia.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: दो ओवर्स 12 रन देकर एक सफलता, ये हैं दीप्ति शर्मा की गेंदबाजी के आंकड़े। दो ओवर्स में 10 रन देकर एक सफलता, ये श्रीचरणी की गेंदबाजी के आंकड़े हैं। ये दोनों स्पिन गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर दबाव डालने में पूरी तरह से सफल रहे हैं, और देखना है कि ये कहानी कितनी लंबी चलती है, किस तरह की गेंदबाजी से और ज्यादा कितना दबाव बना पाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। 72 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर्स का खेल अब तक हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 60 गेंदों में 99 रन, और राधा यादव को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ बैकफुट पर जाकर इसे ड्राइव किया था पॉइंट क्षेत्र में, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन भागने का मौका। अच्छी गेंद राधा यादव की जिसमें फ्लाइट थी मगर शॉर्ट ऑफ लेंथ ऑफ स्टंप पर, और इसे हल्के हाथों से खेलकर एक रन पूरा कर लिया था पैरी ने। गार्डनर सामना करेंगी राधा यादव का। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज राधा यादव, जिनका प्रयास ये रहता है कि गुड लेंथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप पर की जाए, अराउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई। तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ, जिसे बैकफुट पर जाकर ड्राइव किया मगर रन बनने की कोई संभावना नहीं। 91 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 106 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं राधा यादव। फ्लाइटेड गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था गार्डनर ने, सीधे बल्ले से ड्राइव किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर। स्मृति है वहां पर जिन्होंने फील्ड करके वापस थ्रो किया। 74 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 10.3 ओवर के बाद। 57 गेंदों में 97 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। रन रेट थोड़ा बढ़ता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ इस समय, जिस तरह का दबाव भारतीय गेंदबाजों ने बनाया। राधा शर्मा की ये गेंद स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइटेड, जिसे कवर्स क्षेत्र पर खेला था पेरी ने, रन बनने की संभावना नहीं। ज्यादा टर्न देखने को नहीं मिल रहा है इस ओवर में। 2 रन आए हैं अभी 4 गेंदों में। अराउंड द विकेट राधा यादव की ये गेंद थोड़ी तेज फेंकी हुई, जिसे ड्राइव किया कवर्स क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार जा रही है, 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: इस गेंद को थोड़ा तेज फेंका था राधा यादव ने मगर दिशा को और लंबाई को सही नहीं रख पाई, ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच, और ये दोनों कारण काफी थे पैरी के लिए एक मजबूत कवर ड्राइव खेलने के लिए और गैप में खेलने के लिए, जिसकी वजह से 4 रन मिले। राधा यादव की ये गेंद इस बार फ्लाइटेड ऑफ स्टंप पर, जिसे फिर से ड्राइव किया गया, डीप कवर्स पर हैं फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे एक रन भागने का मौका। 11 ओवर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया 79 3 विकेट पर।
4: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
1: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So Harmanpreet has already used 6 bowlers so far in this 11 overs of Australian innings, and it will be interesting to see where she gets in. Kranti Gurr to bowl in a over or two, or she would completely leave her out till another wicket or so fell in. Shefali Verma replaces Deepti Sharma. Shefali's will be third over this time and bowling to Ellis Perry. This time she went on the back for a good length ball and she checks the stroke. Ball rolls down to Radha Yadav on mid-on for just a single. With that single, Australia moves on to 80 for 3, and the required run rate now is more than 10 runs per over, 10.3 runs per over. But there's enough power in Australia's batting lineup to come, so there won't be too much thinking about it till the time they build in a partnership. Shefali Verma, a little slower delivery with 75 miles kilometer per hour. And this is 81 for 3 in 11.2 overs. This time with all the supporters, this 21,000 odd people cheering up for India and Australia together. There will be some supporters of South Africa as well in the field. This time cuts it down, and by the time there's a few yards of running for Renuka Singh to do. And the batter managed to take one more run. So three balls. Three runs. Indians wouldn't mind a single coming off at this stage because that builds in pressure on the next ball. 11.3 overs gone. 82 for 3. Another single resulted in that delivery. Gardner onto the back foot, drives it on the on side. By the time ball goes to deep mid-wicket region, or rather mid-wicket region, the player has time to shuffle their ends. 11.4 overs gone. 83 for 3. And the percentage of India winning is increasing with every time. This time there's a slash. The two players chasing. Kranti Gurr beats the ball, jumps, and by the time that player has enough time to cross for two more runs. A direct throw from Kranti Gurr, but Ellis Perry was quite back in a crease. She is playing a little cameo. 23 runs of 17 deliveries that she has faced and got a couple of boundaries earlier. And she is a danger lady. We know what she can do. She's single-handedly won matches for Australia. She's one athlete who has played two professional games for Australia. She used to play soccer. She has played Soccer World Cup for Australia. She has played Cricket World Cup also for Australia. This time, she was looking for a drive, dancing down the wicket, but Shefali checks in her arc of the delivery, slows it down, waited, and that gives time for Ellis Perry also to check her stroke. So end of over number 12 for Australia. They're just 3 wickets down.
2: 85 Australia ka score 3 wicket ke nuksan par 8 overs ka khel baki. 48 gendon mein 86 run chahiye Australia ko. 10 se upar ki ausat hai aur jis tarah se gendbazi ho rahi hai, bhartiye ye sabhi gendbaz ye samajh chuke hain ki jitni tez aap gend fenke utne prahar se stroke lagta hai. Isliye फ्लाइट करने की कोशिश की जा रही है स्पिन गेंदबाजी में, और यही देखा शेफाली की गेंदों में ज्यादातर स्टंप्स के बीचों बीच फ्लाइट करने का प्रयास. राधा शर्मा अपने ओवर की पहली गेंद फेंकती हुई, ये फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से खेला गार्डनर ने. 4 रन.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, जिसने पूरी तरह से मौका दिया बाजू खोलने का गार्डनर को, और कदमों का इस्तेमाल करके बड़े अच्छे तरीके से इसे कवर्स के ऊपर से स्ट्रोक को खेला गार्डनर. 89 for 3 ऑस्ट्रेलिया. राधा यादव की ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन, इस बार पुल कर दिया मिड विकेट क्षेत्र पर. गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई है. 6 रन.
3: ये लगा आभा का छक्का.
2: दो कमजोर गेंदें और उस पर प्रहार लगाने से नहीं चूकी गार्डनर. पहली गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंप के बाहर, दूसरी शॉर्ट ऑफ लेंथ मिडल स्टंप पर, जिसे खूबसूरत तरीके से पुल किया 6 रन के लिए. दर्शनीय बल्लेबाजी गार्डनर द्वारा. 95 स्कोर होता हुआ ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट के नुकसान पर. 46 गेंदों में अब 76 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया. गार्डनर 9 गेंदों में 15 रन बना चुकी है, एक छक्के और एक चौके की मदद से। इस ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार राधा यादव राउंड द विकेट गेंदबाजी करती हुई। इस बार ये गेंद जिसमें कम फ्लाइट, स्टंप के बीचों बीच वापस गेंदबाज की तरफ खेला, डॉट बॉल, रन बनने की संभावना नहीं। 10 गेंदों में 15 रन बना चुकी हैं गार्डनर। 95 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 12.3 ओवर के बाद। 30,000 क्षमता है लॉर्ड्स स्टेडियम की। 27,000 दर्शक इस मुकाबले को देखने के लिए आज पहुंचे हैं, जो कि रिकॉर्ड है ग्रुप स्टेज मैचेस में दर्शकों के आने का। इस बीच राधा यादव की ये फुल टॉस गेंद जिसे ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर गार्डनर ने, और एक रन भागने का मौका। 96 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 12.4 ओवर के बाद। राधा यादव की ये तेज फेंकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे कट किया पेरी ने, कोई फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: 12.5 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया के 100 रन पूरे 3 विकेट के नुकसान पर। 43 गेंदों में अब 71 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। इस ओवर में रनों की रफ्तार बढ़ती हुई, और उसका कारण यह है कि राधा यादव ने कुछ कमजोर गेंदें फेंकी हैं, और हरमनप्रीत भी इससे नाखुश कि जिस तरह की गेंदबाजी राधा यादव कर रही है। इस बार फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर, और जब तक श्रीचर ने गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, पेरी के पास मौका 2 रन भागने का। 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया 102 3 विकेट के नुकसान पर।
4: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
1: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: A much-needed over for Australians when the required run rate was inching towards 11 runs per over. That over, Radha Yadav consisted 17 runs, 2 boundaries and a 6, which brings down to another 9.5 runs per over. This time, Deepthi Sharma coming in with her third over, and see what she can do. She's brought in to take the wicket here. Perry looking dangerous, so is Gardner. 13.1 overs gone, 103 for 3, still 87 runs required of 49 deliveries. There's tension simmering all around. This is actually playing to a great game of one day display by both teams, not giving anything to each other. India so far has been dominating in those last 4-5 overs and in the power play, but then Australians are doing the Australian thing. They are clawing back to the game with 17 runs in that over. Deepthi Sharma again close to the umpire, makes it full toss, dances down the wicket. There's someone in the deep, cuts it down, Jemima Rodrigues, but enough time for both the players to take two. So with that two, now 39 deliveries to go, 65 runs required. 39 balls, 65 runs, 106 for 3. India needed a wicket at this stage. 38 runs of partnership between these two, Ellis Perry and Ashleigh Gardner. Ashleigh Gardner has been very clinical. 19 runs of 13 balls. Now she has taken her total 20 runs of 14 deliveries. 107 for 3. 13.4 overs. This match is going down to the wire. 64 required. 38 deliveries to go. 14 forward in progress. 171 is the target. And currently Australia are sitting at 107 for 3. India, though, managed to pick wicket, but this partnership is looking dangerous in the air. Let us see what happens. One bounce, two bounce to Radha Yadav, fields it, throws it back to Jemima Rodrigues. Batsman or the batter has time to take two more runs here. Very nice fielding there in the deep. Deepthi Sharma so far in 5 deliveries has conceded 7 runs. So I would say at par bowling with the required run rate, 9 runs they require, she's conceded 7. One more dot ball would again take the run rate to 10 runs and per over. 13.5 overs, 119. This is a very bad delivery, but equally bad shot. She's not happy with the shot that she played. She knows she missed in boundary opportunities. So 14 overs gone, 109 for 3, 36 legal deliveries and 62 runs required. Birinder ji, this match is actually going great for both teams.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: ब्रिंक्स का समय हो चुका है, 6 ओवर का खेल बाकी है और 109 रन ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए हैं और 36 गेंदों में 62 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। खेल अभी भी संतुलित है क्योंकि अच्छे ओवर अभी भारत की तरफ से आने बाकी हैं। श्री चरनी के कुछ ओवर बाकी हैं और तेज गति की गेंदबाजी आनी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की तरफ देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज इस समय आत्मविश्वास में हैं। एलिस पेरी जो कि 32 पर इस समय 23 गेंदों का सामना करने के बाद बल्लेबाजी कर रही हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं, पूरी तरह से आत्मविश्वास में हैं और जब भी जरूरत पड़ती है आक्रमण की वो कर रही हैं। और गार्डनर जो कि मझी हुई अनुभवी बल्लेबाज हैं, पूरी तरह से सक्षम है आक्रमण करने में। तो ये खेल किसी भी तरफ जा सकता है। 14 गेंदों में 20 रन गार्डनर ने बनाए हैं और पूरी तरह से सक्षम है वो भारतीय गेंदबाजी के ऊपर आक्रमण करने में। तो देखना ये है कि क्या भारतीय गेंदबाजी कुछ सफलताएं प्राप्त करके, कुछ विकेट हासिल करके दबाव बनाती हैं ऑस्ट्रेलिया पर, या फिर ये दोनों बल्लेबाज अश्विन इसी तरह से रन बटोरते रहेंगी और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य के करीब लेकर जाती रहेंगी।
0: एंड इंडियन सेमीफाइनल होप्स आर हैंगिंग बाय अ थिन थ्रेड ऑफ 36 बॉल्स एंड दोस 62 ऑड रन्स दैट ऑस्ट्रेलियंस रिक्वायर इन दोस 36 बॉल्स, सो अ वेरी थिन मार्जिन। एंड व्हाट इंडियन नीड, दे हैव बीन वेरी क्लिनिकल सो फार, दे नीड टू पिक अप विकेट्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल एंड दैट चोक्स अप द रन्स। यू नो, न्यू पर्सन कम्स इन, टेक्स टाइम टू सेटल एंड स्कोर, एंड दैट्स व्हाट वुड बी इंपॉर्टेंट एंड वुड बी डिस्कस्ड इन दिस ड्रिंक्स ब्रेक इन द हडल बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्पायर एंड ऑल द प्लेयर्स टू रीग्रुप देमसेल्व्स, स्लो डाउन द गेम अ लिटिल बिट बिकॉज दोस टू ओवर्स हैव कॉस्टेड इंडिया सम रन्स। अदरवाइज 11 runs per over was going to an area where it was match was tilting toward India, but Australia are now again clawing back onto the game. 109 for 3 of 14, 36 more balls to go and they just need 62, and that makes hearts pumping for everyone all around in our commentators box, the fans all around the globe thinking what's going to happen in those 36 deliveries.
2: और इन 6 ओवर्स में अश्विन ये बात पक्की है कि इस दबाव की स्थिति में आपको अनुशासित और स्टीक गेंदबाजी करनी होगी। आपने देखा कि अगर आप कुछ भी कमजोर गेंद फेंकते हैं तो बल्लेबाज आपको बख्शेंगे नहीं, जिस तरह से राधा यादव ने एक ओवर में कुछ कमजोर गेंदें फेंकी और उस पर रन बनाने के मौके मिले। श्री चरनी अपने ओवर की शुरुआत करते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर इसे पुल किया गार्डनर ने और हालांकि ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी ये गेंद, मगर उनसे दूर, जिसकी वजह से रन बनाने का मौका। 110 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। श्री चरनी जो कि सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से, आज भी सफलताएं प्राप्त कर चुकी हैं, अपने ओवर की शुरुआत करती हैं। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद जिसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, लॉन्ग ऑन पर जब तक स्मृति गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। श्री चरनी का ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा, अगर किसी बल्लेबाज को आउट करने में वो सफल हो पाती हैं तो दबाव बनेगा ऑस्ट्रेलिया पर। अराउंड द विकेट श्री चरनी की ये गेंद, इसे उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से गार्डनर ने, स्लॉग स्वीप किया, गेंद सीमा रेखा पार कर गई, 6 रन।
3: ये लगा आभा का छक्का।
2: श्री चरनी ने फ्लाइट की थी मिडल स्टंप पर, जिसे स्लॉग स्वीप किया गार्डनर ने और बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शानदार फॉलो थ्रू और सीमा रेखा से काफी दूर गिरी गेंद, जो ये बताती है कि स्ट्रोक अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ था। दबाव भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, जिस तरह से स्ट्रोक लग रहे हैं, रन बन रहे हैं। 117 ऑस्ट्रेलिया, 33 गेंदों में 54 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। 117 पर 3, 14.3 ओवर हो चुके हैं। श्री चरनी जो कि भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, एक सफलता प्राप्त कर चुकी हैं, अपना तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अराउंड द विकेट फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन होता हुआ, गार्डनर 27 पर 16 गेंदों का सामना करने के बाद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कदमों का इस्तेमाल करके कवर्स के ऊपर से ड्राइव किया, काफी देर हवा में रही गेंद, राधा यादव है वहां पर, मगर उनसे दूर गेंद फील्ड किया गया और एक रन भागने का मौका। 50 रन की साझेदारी, पेरी और गार्डनर के बीच 33 गेंदों में 19 मिनट्स में दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी कर रही थी और पूरी तरह से निकलने का प्रयास कर रही हैं इस दबाव से। एक बार फिर से तेज फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसे स्टीयर कर दिया गया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन।
3: ये लगा आभा का चौका।
2: पैरी के बल्ले से निकला था ये स्ट्रोक, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये तेज फेंकी हुई गेंद थी श्री चरनी की, ओवर द विकेट और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। फ्री हिट मिलेगी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को और मौके रन भुनाने के 123 हुआ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर। दबाव बनता हुआ श्री चरनी पर, भारत पर, रनों की रफ्तार बढ़ती हुई ऑस्ट्रेलिया की। दोनों बल्लेबाज जो कि 50 रन की साझेदारी कर चुकी हैं, तेज खेलती हुई, आक्रामक होती हुई, लक्ष्य के करीब पहुंचती हुई, रुकना होगा भारत को और ये रुक सकता है विकेट प्राप्त करके। श्री चरनी की ये फुल टॉस गेंद, जिसे सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया स्मृति मंधाना के पास और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 124 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर।
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
1: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
5: ली। जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: So that is the end of the over number 15. 15 overs got 125 for 3. The equation now is 30 balls, 46 runs is what Australians require, and that is bringing in some of disappointment for Indians fans all across. They need to be extremely tight. There was a no ball bowl. There was one bound. 15 runs conceded in that over, which. And earlier 17 runs conceded, that brings Australia back into the game. They are 125-3. And let us see who's going to bowl the next over. Shefali Verma comes in, first delivery, shorter delivery, pulls it and should go for 4. Yes, it does. So boundaries are coming in barrage for Australia. They have actually changed or switched the gear from first to straight away fourth. 129-3.
3: Ye laga.
0: A similar script being played out, what has been done with South Africa earlier. India was controlling the game till 10-12th over, and after that India has leaked runs to Marzenka, but this time Ellis Perry and Ashley Gardner are taking Indians to the cleaners. There's some bit of poor bowling by Indians, and Australians were able to punish them as hard as possible. So 28 balls to go, 41 runs required. This is the last over Shefali Verma. 3.2 overs she has bowled, 26 runs she has conceded, and this time, third time in this over, cuts it, but straight to the field. There's a misfield there. Deepthi Sharma runs in, can she cuts it off? 1-2 looks unlikely, and this ball also goes to the boundary. So when the times are tough, the mistake happens, and that's what is happening. Harmanpreet needs to come and regroup as a leader. Tell them to calm down. The boundaries are leaking. Kranti got this time. Uneven bounce there. She actually loses the grip of the ball in that bounce, and that conceded a boundary. So two boundaries came off this over of Shefali Verma. That takes their score to 134-3. 37 requires of 27 deliveries. Now equation difference is just 10 balls or 10 runs per over. Per ball, so that has been reducing so far. 15.3 overs gone, 134-3, 171 required. So 37 more. There's some talk between Richa Ghosh and Shefali Verma. They need to slow the things down, because off late there's too much wayward bowling, which costed them runs. Let's see what she can do this time. A good ball, good length delivery, and just a single. Shefali is saying, don't throw, just it's okay. Single has been conceded. We're fine with it. And has been able to calm down Arundhati Reddy, who's in for Kranti Gaur, who missed the variable bounce and conceded the boundary. And I think in that process she has hurt her thumb. 15.4 overs gone, 135-3. This time Gardner pulls it to the deep mid-wicket region. Jemima Rodericks fields it and throws it back to Shefali. She's not happy. 25 balls more to go. 35 runs to score. Match is going out of India's grips because they have 7

0: wickets in hand. Let's see what they can. They need wicket badly, but Australians are not giving anything. A similar kind of shot this time by Ellis Perry. Same run, same place, same kind of ball. Single conceded. So 24 balls required. 24 balls to go. 34 runs required for Australia to win this match.
1: ये ओवर भारत के लिहाज से काफी बुरा रहा भारत के लिए, जिस तरह से स्ट्रोक्स लगे, रन बने और रनों की औसत नीचे आई। चार ओवर्स में अब 34 रन चाहिए, 8 से कुछ ज्यादा की औसत दरकार ऑस्ट्रेलिया को। और जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की जा रही है गार्डनर और पेरी द्वारा, उनके लिए ये लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। भारत को जरूरत है विकेट की, क्योंकि जब तक ये साझेदारी टूटेगी नहीं, भारत वापस दबाव नहीं बना सकेगा, इस मैच में वापसी नहीं कर सकेगा। ये मुकाबला, ये मैच जो भारत के लिए जीतना बहुत जरूरी है, और इस समय ऑस्ट्रेलिया अपने पक्ष में इस मैच को ले जाता हुआ जिस तरह की बल्लेबाजी अब हो रही है। चार ओवर में 34 रन चाहिए और देखना है कि कप्तान हरमनप्रीत गेंदबाजी के लिए किसे बुलाती हैं। अब तक रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, शेफाली वर्मा, श्री चरनी, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, इन गेंदबाजों का इस्तेमाल हो चुका है। रेणुका सिंह, श्री चरनी और दीप्ति शर्मा ये सफल गेंदबाज हैं भारत की तरफ से। रेणुका सिंह को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। ये पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, बैकफुट पर जाकर इसे ऑन ड्राइव किया पेरी ने, जो कि 45 पर बल्लेबाजी कर रही हैं। और जब तक स्मृति लॉन्ग ऑन से फील्ड करके बॉल को थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। 138 तीन विकेट पर इस समय ऑस्ट्रेलिया। शॉर्ट थर्डमैन पॉइंट कवर मिड ऑफ की ऑफ साइड पर फील्डिंग है। रेणुका सिंह की ये गेंद गुड लेंथ, जिसे सीधे बल्ले से वापस गेंदबाज की तरफ खेला, फॉलो थ्रू में इसे फील्ड किया गया। रन बनने की कोई संभावना नहीं। 138 पर 3, 16.2 ओवर के बाद 22 गेंदें, 33 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। भारत इस समय विकेट की तलाश करता हुआ, जो मिल नहीं पा रही है। रेणुका सिंह भारत की तरफ से सफल गेंदबाज, जिन्होंने पारी की दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त की थी। इस बार उठा दिया गार्डनर ने लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद हवा में सीमा रेखा पार करती हुई 6 रन।
2: ये लगा आभा का छक्का।
1: गार्डनर पूरी तरह से आत्मविश्वास में, 41 पर बल्लेबाजी कर रही हैं, 23 गेंदों का सामना करते हुए। ये गेंद गुड लेंथ, जिसे कदमों का इस्तेमाल करके बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे ऊंचा और बड़ा शॉट खेला था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, और गेंद हवाई रूट लेती हुई सीमा रेखा पार कर गई 6 रन के लिए। रनों की रफ्तार तेज होती हुई 16.3 ओवर में 144 ऑस्ट्रेलिया, 21 गेंदों में 27 रन दरकार ऑस्ट्रेलिया को। लक्ष्य के करीब जाती हुई ऑस्ट्रेलिया। ओवर द विकेट रेणुका सिंह एक बार फिर से गार्डनर के लिए, गुड लेंथ गेंद, सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव किया। स्मृति मंदाना है वहां पर लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, एक रन भागने का मौका। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से जम चुके हैं, जिम्मेदारी से और सूझबूझ से खेलते हुए। 45 पर पेरी, 42 पर गार्डनर, 145 ऑस्ट्रेलिया तीन विकेट पर 16.4 ओवर के बाद। इस ओवर की दो गेंदें बाकी। रेणुका सिंह ओवर द विकेट, गुड लेंथ गेंद, इसे स्लॉग स्वीप किया मिड विकेट क्षेत्र पर, गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: दर्शनीय स्ट्रोक पैरी का, जो कि 49 पर पहुंच चुकी हैं इस चौके के बाद। गुड लेंथ गेंद थी मिडल स्टंप पर, जिसे ऊंचा खेले मिड विकेट क्षेत्र पर, जहां कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए। मैच भारत के हाथ से फिसलता हुआ, जिस तरह से आक्रामक बल्लेबाजी हो रही है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। 149 तीन विकेट पर ऑस्ट्रेलिया। रेणुका सिंह ओवर द विकेट पैरी के लिए, 31 गेंदों में 49 रन की पारी पैरी द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद रेणुका सिंह ओवर द विकेट। ये गेंद काफी बाहर धीमी गति से फेंकी हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। एक और रन ऑस्ट्रेलिया के खाते में, और ये इतनी बाहर थी गेंद कि अंपायर ने इसे वाइड बॉल की जगह नो बॉल का निर्णय दिया है। फ्री हिट ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पेरी के लिए, जो कि इस समय 49 पर बल्लेबाजी कर रही हैं, और इस एक नो बॉल द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 150 रन पूरे। 19 गेंदों में 22 रन ऑस्ट्रेलिया को चाहिए। रेणुका सिंह इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकेगी पैरी के लिए।

0: श्रीचर ने अपना ओवर डालती हुई। ओवर द विकेट फ्लाइटेड गेंद जिसे स्क्वायर ड्राइव किया बल्लेबाज गार्डनर ने डीप कवर्स क्षेत्र पर और एक रन भागने का मौका। चार रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारा। आज का मुकाबला जीतकर ग्रुप स्टेज में वो पहले नंबर पर रहेगा और अपने सभी मुकाबले जीतेगा, जिस तरह से ये जीत निश्चित दिखाई दे रही है। श्री चरनी इस वर्ल्ड कप में 13 सफलताएं 13 विकेट्स प्राप्त कर चुकी हैं। अपने इस स्पेल का आखिरी ओवर डालती हुई आज भी एक सफलता उन्हें प्राप्त हुई थी। 167 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। गार्डनर सामना करेंगे श्री चरनी का। फ्लाइटेड फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से ड्राइव लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक रन फिर से भागने का मौका। 100 रन की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 100 रन की साझेदारी में 45 पैरी के हैं गार्डनर के 53, 57 गेंदें ली हैं उन्होंने इस 100 रन की साझेदारी को बनाने के लिए। 168 ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट पर। 10 गेंदों में 3 रन चाहिए। पैरी सामना करेंगी श्री चरनी का। ओवर द विकेट श्री चरनी की ये गेंद फ्लाइटेड ऑफ स्टंपर जिसे ड्राइव किया कवर क्षेत्र पर। दीप्ति शर्मा है वहां पर। रन बनने की कोई संभावना नहीं। ये मुकाबला अब से 5 ओवर पहले जो संतुलित नजर आ रहा था उसने अगर अंतर डाला है इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया है तो इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से जिन्होंने समझदारी से और सटीक बल्लेबाजी की है। इस बार उठा दिया गेंद हवा में, शफाली है गेंद के नीचे और इसे कैच कर लिया गया और पैरी 56 रन की पारी खेलकर वापस लौट रही हैं। ये चौथी सफलता भारत को, मगर काफी देर हो चुकी है। जिस तरह से रन दरकार है ऑस्ट्रेलिया के सामने ये ज्यादा मायने नहीं रखेगी ये सफलता दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल जीत की राह पर ऑस्ट्रेलिया इस समय और ये भारतीय खेमा जानता है, जिसकी वजह से इस विकेट को प्राप्त करने के बाद भी कुछ ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो जानते हैं कि मैच उनके हाथ से फिसल चुका है। ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में उनसे बाजी मार चुका है। 8 गेंदों में अश्विन मात्र 3 रन चाहिए और देखा जाए तो इस आखिरी सत्र में खेल के इस आखिरी पड़ाव में दूसरी ड्रिंक्स के बाद ऑस्ट्रेलिया हावी रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने आउटप्ले किया है भारत को।
1: Actually, there's a lot of despair that these two players have brought into Indian dressing room. They have played nicely with 100 in partnership. At one stage, it was looking like 11 runs per over they required, but Australians are, with their never-say-die attitude, they have been able to cross that boundary comfortably. So that wicket for Sri Charni here, that's her wicket number 14 in the World Cup, but that's where she will end her the World Cup campaign because India most likely are crushing out of this World Cup.
0: Where हम आए हैं बल्लेबाजी के लिए श्री चरनी की ये पहली गेंद उनके लिए गुड लेंथ जिसे सीधे बल्ले से खेला गया। रन बनने की संभावना नहीं। 7 गेंदों में 3 रन बनाने हैं ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने पहले सटीक प्रभावशाली गेंदबाजी की जिसकी वजह से भारत को ज्यादा रन नहीं बनाने दिए और उसके बाद बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकल के ये ड्राइव किया वेरहम ने और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रन के लिए।

0: पासपोर्ट्स लाई हो ना?
1: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
0: तुम हो ही भुलक्कड़।
1: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर
2: ली। जानिए आभा के बारे में।
1: आभा
2: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: तो आपको ये जानकारी दे दें कि आईसीसी टी20 महिला विश्व कप में भारत का सफर आज समाप्त हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया से भारत आज पराजित हो चुका है। पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। 170 रन का लक्ष्य दिया, जिसमें स्मृति ने 38 रन की पारी खेली। शफाली वर्मा 34 रन बनाकर आउट हो गई थी। जमीमा ने 34 रन बनाए थे और फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 170 रन का लक्ष्य दिया और जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर्स में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया, जिसमें शानदार अर्धशतक शामिल हैं पेरी के और गार्डनर के। तो आपको ये बताते हुए कि भारत का आज का ये लीग मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ समाप्त हो चुका है, भारत पराजित हो चुका है और वर्ल्ड कप में भारत का सफर बस यहीं तक रहेगा। ये बताते हुए आपको अब ये बता दें कि हमारा विशेष कार्यक्रम आप जरूर सुने, जिसमें फोन करके आप अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। सुनिए इस कार्यक्रम को और अपने विचार साझा कीजिए। नमस्कार।
5: प्लेयर ऑफ द मैच।